नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज है मंगलवार, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं सुबह के 5:58 और 46 सेकंड। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है। खेती की बातें, कृषि संबंधी कुछ बातें आइए इस कार्यक्रम के तहत आपको सुनवाएं। समेकित कीट प्रबंधन, आलेख और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का। पूर्व प्रसारित यह जानकारी है।
3: किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में बातें समेकित कीट प्रबंधन की। जी हाँ किसान भाइयों, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों और आधुनिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी भरपूर व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पर्यावरण का दूषित होना, खाद्य पदार्थों में रासायनिक कीटनाशी का अवशेष पाया जाना और गौण कीटों का प्रमुख कीड़ों का रूप लेना। किसान भाइयों, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रासायनिक कीटनाशी के अंधाधुंध प्रयोग से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। फलतः पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और किसानों को हानि उठाना पड़ रहा है। इसलिए टिकाऊ खेती के लिए ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी बना रहे, और इसके लिए समेकित कीट प्रबंधन कर आर्थिक लाभ को बनाए रखा जा सकता है। समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत अंगीकृत की जाने वाली जो उन्नत तकनीक है वो हम आपको बता दें। सबसे पहला कृषि कार्यगत नियंत्रण की हम बात करते हैं। इस पद्धति में किसानों द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्यों जैसे खेतों की गहरी जुताई, खरपतवार को नष्ट करना, खेतों में सड़ा हुआ गोबर, कंपोस्ट एवं करंज की खली का व्यवहार करना, अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग करना, समेकित उर्वरक का प्रयोग करना, स्वस्थ एवं उपचारित बीजों का व्यवहार करना, सिंचाई का प्रबंध करना, फसलों की उचित समय पर बुआई और कटाई, इन तरीकों को अपनाने से लागत में किसी तरह से वृद्धि भी नहीं होती है। इसलिए किसानों को समेकित कीट प्रबंधन से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जैविक नियंत्रण की बात करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली में कीड़ों का नियंत्रण उनके प्राकृतिक शत्रुओं के द्वारा स्वतः ही होते रहते हैं, पर विकट परिस्थिति में कीड़ों की संख्या अधिक होने पर परजीवी और परभक्षी कीड़ों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ता है ताकि दुश्मन कीड़ों की संख्या को कम किया जा सके। इसलिए जैविक नियंत्रण कार्यक्रम में परजीवी और परभक्षी कीड़ों के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, अब बातें घरेलू कीटनाशकों के प्रयोग की। घर में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर कीड़ों की संख्या को आप कम कर सकते हैं। इनके प्रयोग से लागत में कमी होती है और पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाने के तरीके में आप एक बाल्टी लें और नीम की पत्तियों से उसे भर दें और उसको पानी में डुबोकर 4 दिन के लिए छोड़ दें। 5वें दिन नीम की पत्तियों को छांटकर मिश्रण तैयार कर लें और घोल को छानकर थोड़ा सा साबुन का घोल मिलाएं, उसके बाद छिड़काव करें। इसके कारण बहुत सी कीड़ों की संख्या कम हो जाती है। नीम के बीज से कीटनाशी बनाने के लिए आप 1 किलोग्राम नीम के बीज को धूल में परिवर्तित कर लें। धूल को 20 लीटर पानी में मिलाकर रात भर फूलने के लिए छोड़ दें। सुबह अच्छी तरह मिलाकर छान लें। छानने के बाद घोल में 30 ग्राम साबुन का घोल मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। नीम के बीज से निर्मित कीटनाशी अधिक प्रभावशाली होता है और अनेक प्रकार के कीड़ों के नियंत्रण में सक्षम भी होता है। हरा तीता मिर्चा और लहसुन की कीटनाशी भी आप बना सकते हैं। इसमें आप 3 किलोग्राम हरा तीता मिर्चा ले लें। मिर्चों के डंठल को हटाकर पीसकर 10 लीटर पानी में डुबोकर रात भर के लिए छोड़ दें। दूसरे बर्तन में 1/2 किलोग्राम लहसुन को कूचकर 250 मिलीलीटर किरासन तेल में डुबोकर रात भर छोड़ दें। सुबह में दोनों घोल को अच्छी तरह मिलाकर छान लें। 1 लीटर पानी में 75 ग्राम साबुन का घोल बनाकर घोल को एक साथ मिला दें। 2-2.5 घंटा स्थिर होने के बाद घोल को आप फिर छान लें। इस घोल में 70 लीटर पानी मिलाने के बाद फसलों पर छिड़काव करें। यह कीटनाशी गोभी की कीड़ों के अलावा अन्य फसलों में लगने वाले पिल्लू को भी नियंत्रित करता है। कीटनाशक रसायनों का प्रयोग अगर करना हो किसान भाइयों, तो आवश्यकता होने पर ही सुरक्षित कीटनाशी का व्यवहार उचित समय और उचित मात्रा में करें। प्रचलित कीटनाशक रसायनों के नियंत्रण के मुकाबले समेकित कीट प्रबंधन से कई लाभ देखे गए हैं, जैसे यह एक टिकाऊ और प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों पर आश्रित होने का लाभदायक है। यह पर्यावरण को शुद्ध करने में मददगार होता है, मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, कीड़ों में रसायन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को कम करने में

नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायास ही मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं, कोयल कूक रही है, ढेक और महोक पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान का पाठ अभी आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है अब आज का चिंतन।

भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोर नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरुजी के सम्मान में इस स्थान का नाम नानकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कश्मकश का दौर था। न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि जाति का भेदभाव बहुत अधिक था। निम्न जाति के लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव जी पर बहुत असर हुआ। वे कहते हैं, ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव जी अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो यह बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है, तभी वह ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है, उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिन के संगी साथ, वडियां सियु किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाय के संभाले सब नाह, जिन करते कर ना किया चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों? गुरु नानक देव ने कहा है कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा तो वहाँ जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितर पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान हैं। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान उन्हें पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक ने सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। गुरु नानक जी की गुरुवाणी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच, है भी सच नानक हो से भी सच, सोच सोच न होवे जो सोची लाख वार, छुपे छुपे न होवे जे लाई हर लखता, रोखिया पुख न उतरी जे बनिया पुरिया पार, सहास्या पा लाख वह है ता एक न चले नाल, केवे सचियारा होइए केवे कूड़े टूटते पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिए नाल।

अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन नानक वाणी। आलेख और वाचन स्वर था अनुपमा तिवारी का। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना के तहत आइए सुनते हैं कुछ भजन। कार्यक्रम की शुरुआत श्री हनुमान जी के भजन के साथ।

0: हरिओम शरण के गाए इसी भक्ति संगीत के साथ ही भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। दांतों की आम बीमारियां स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको इस बीमारी पर डॉक्टर विनीत कुमार सिंह दंत चिकित्सक पलामू से ली गई भेंट वार्ता सुनवाते हैं। बातचीत कर रहे हैं संजय कुमार मिश्रा।
1: कार्यक्रम कल्याणी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं आइए आज खास तौर पे दांतों से संबंधित कई तरह की बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने ये सुना है कि दांतों में लगने वाले कई तरह की बीमारियां होती हैं और उससे संबंधित डॉक्टर से मिलके वो परेशानी दूर की जाती है, लेकिन आज कुछ खास तौर पे बात करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि दांतों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए आज हमारे डॉक्टर लड़ने के लिए तैयार हैं और स्किलफुल हैं। वो उनके पास ये कौशल है, उन्होंने इतनी पढ़ाई कर रखी है कि दांतों से संबंधित हर तरह की परेशानी को वो दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, क्या है, क्या परेशानी है, तो आज इस विषय पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में आमंत्रित शहर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर विनीत कुमार सिंह। डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार मिश्रा जी और सारे सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब दांतों से जुड़ी कई तरह की बीमारियां होती हैं। लोग जानते हैं कि यह पायरिया होता है, दांतों से खून आना, मसूड़े से बदबू आना, मुंह में किसी तरह का साफ सफाई नहीं होना, बहुत तरह की बातें आम बीमारी हैं और लोगों को पता होता है कि ये दांत से जुड़ी समस्याएं हैं। लेकिन इससे बड़ी एक समस्या दांत की ये होती है, आप अक्सर ये आप इलाज भी करते होंगे, कि दांत मुँह से बाहर निकल जाते हैं, छोटे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ये दंत चिकित्सक के लिए क्या है, किस तरह की परेशानी है, क्या कहते हैं इसको?
2: श्रोताओं ये जो बीमारी है या जो सर पूछ रहे हैं, ये टेढ़े मेढ़े दांत, बाहर निकले हुए दांत, बाहर निकला हुआ जबड़ा, या आप अगर मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो दांत आपके बाहर दिख रहे हैं, मसूड़े आपके बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुस्कुराने पर, ये डेंटिस्ट्री में एक चिकित्सा विधि है, ऑर्थोडोंटिक्स एक पार्ट है जिसके अंतर्गत आता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट होते हैं जो आफ्टर डेंटिस्ट्री, आफ्टर दांत की जो 5 साल की पढ़ाई है उसके बाद अलग से 3 साल इस पार्टिकुलर फील्ड के लिए पढ़ते हैं और इन विकृतियों का सफल इलाज करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब अब ये क्या एकदम आसान है, संभव है कि लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए या थोड़े बड़े होकर मुंह से बाहर निकल गए, इसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है आज के समय में?
2: देखिए जहाँ तक बात पूरी तरह ठीक करने की है तो जो चीज़ आपको बन के मिली है आप उसको 100% कभी भी सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको इतना अच्छा किया जा सकता है कि आप आज जो अपने सेल्फ और कॉन्फिडेंस को टेढ़े मेढ़े दांत या बाहर निकले हुए दांत की वजह से कमज़ोर समझ रहे हैं, आपके चेहरे को इतनी खूबसूरती से चेंज किया जा सकता है या दांतों को चेंज किया जा सकता है कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और खूबसूरत मुस्कुराहट की तरह के साथ रहेंगे।
1: डॉक्टर साहब आजकल ये भी देखने में आता है कि ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, तो ऊपर का जबड़ा तो मान लीजिए कि एक निश्चित रूप से पूरे सिर की जो हड्डी है, स्कल है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे का जिसको लोअर जॉ कहते हैं, तो लोअर जॉ में कभी कभी ये विकृति देखने को मिलती है कि ऊपर के जबड़े के बराबर नहीं होता है वो, लेकिन चिकित्सा विज्ञान आज ये भी संभव कर दिखाया है। ये कैसे संभव हो पाता है और ये पूरी तरह संभव है कि पूरी तरह ऊपर वाले जबड़े के बराबर करके उसको पूरी तरह शेप में दे दिया जाए और दांतों की मुंह की खूबसूरती बरकरार रखी जाए?
2: हाँ ये पूरी तरह से संभव है। ऊपर का जबड़ा जो है उसके ग्रोथ को, वो जब आगे बढ़ता है तो उसके ग्रोथ को नीचे का जबड़ा जिसको मैंडिबल कहते हैं वो फॉलो करता है, जिसमें अगर मान लीजिए कि आपका ऊपर का जबड़ा का ग्रोथ सही हो रहा है और नीचे का जबड़ा का ग्रोथ सही नहीं हो रहा है जिसको क्लास 2 डिवीजन कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम जो होती है उसमें नीचे वाले जबड़े के ग्रोथ को हम लोग इन्हांस करते हैं निकालने लगाने वाले अप्लायंस के साथ या फिर फिक्स्ड अप्लायंस के साथ, जबड़े के नीचे वाले जबड़े के ग्रोथ को इन्हांस करके हम उनको एक लाइन में ला सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार ये होता है कि ऊपर का जबड़ा सही ग्रोथ नहीं कर रहा है और नीचे का जबड़ा सही ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से नीचे वाले जबड़े कुछ लोगों के काफ़ी लंबे या बाहर की तरफ निकले हुए दिखते हैं और जो आपका ऊपर का जबड़ा या नाक के पास वाला जो पोर्शन है वो आपको धंसा हुआ दिखता है, तो उसमें इस चीज का उल्टा करके ऊपर वाले जबड़े के ग्रोथ को बढ़ाकर और नीचे वाले जबड़े के ग्रोथ को रोक कर हम खूबसूरत मुस्कुराहट पा सकते हैं।
1: सब ये तो कभी कभार बहुत मुश्किल से या रेयर कह सकते हैं देखने को मिलता है कि जबड़ा नीचे का जबड़ा ऊपर जबड़ा दोनों बराबर के शेप में नहीं है, लेकिन टेढ़े मेढ़े दांत वाली शिकायत कई लोगों को देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और समाज में कई लोग दिख जाते हैं जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं और बड़े विकृत किस्म के दिखते हैं, जो लोगों को खुद बुरा लगता है। लेकिन ये जो होता है दांत का टेढ़ा मेढ़ा निकलना या फिर बाद में ज्यादा निकल जाना, इसके लिए किसे जिम्मेवार आप कहेंगे? लोगों की आदतें, उसके खान पान और उसका जो कह सकते हैं कि ये इसके जो पुराने जो परिवार के लोग हैं, हो सकता है माँ बाप में इस तरह की विकृति हो या उसकी कोई अपनी आदतें हैं, कौन जिम्मेवार होता है जिसकी वजह से दांतें इस तरह की निकलती हैं?
2: देखिए, जिम्मेवारी पूरी तरह से प्रकृति की है। हम परिवार को या किसी चीज को जिम्मेदार या पूरी तरह से पेशेंट को जिम्मेवार नहीं बोल सकते। जिम्मेवारी जो है प्रकृति की है। हर दशक में अगर देखा जाए तो हमारे जबड़े का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। जो हमारे पूर्वज थे उनके जबड़े की साइज काफ़ी बड़ी होती थी, सारे दांत आराम से उसमें आ जाते थे, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है हमारे जबड़े का साइज छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से टेढ़े मेढ़े दांत आने आम हो गए हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन अनुवांशिकी है, हेरिडिटरी है। अगर गार्जियन के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो बच्चों के दांत के चांसेज होते हैं टेढ़े मेढ़े होने के। उसके अलावा एक रीजन ये भी है कि लोग जो हैं पूरी तरह से अवेयर नहीं हैं अपने दांतों को लेकर। उनको लगता है कि ये दूध के दांत हैं, ये कल टूट जाएंगे, उसके बाद फिर पक्के दांत आ जाएंगे, तब देखा जाएगा। जी, जो पुराने डॉक्टर्स थे, डेंटिस्ट हैं, उनका भी यही कहना था कि पक्का दांत आने दीजिए, तब उसके बाद फिर हम लोग दांत को एक लाइन में करेंगे या जबड़े को अंदर करेंगे बाहर करेंगे। जैसे जैसे डेंटिस्ट्री में एडवांसमेंट हो रहा है उसके हिसाब से ये सारी जो भ्रांतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, वो खत्म हो रही हैं। दूध के दांत का भी उतना ही महत्व है जितना पक्के दांतों का है, क्योंकि दूध के दांत के नीचे से पक्के दांत आ रहे हैं। अगर दूध के दांत समय से पहले टूट जाएंगे तो पक्के दांतों का जगह जो है वो कम हो जाता है या वो जगह पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दांत अपने जगह पर नहीं निकल पाता है। इसके अलावा जबड़ा छोटा होने की बात मैंने पहले भी कही, उसकी वजह से जो आपके 32 दांत है, 32 दांत का अपना एक साइज है, जो मेरे मुंह में 32 दांत है या दूसरे के मुंह में 32 दांत है, उनका हर इंसान के चेहरे के हिसाब से, जबड़े के हिसाब से दांतों का साइज छोटा या बड़ा होता है। तो अगर आपके जबड़े के साइज छोटे हैं, दांत 32 आ गए हैं, तो चांसेस पूरे हैं कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े होंगे। बच्चों के दांत में जो खाली जगह होता है उनको जो पेशेंट गार्जियन है वो डॉक्टर्स के पास जाके बोलते हैं कि सर जी ये दांत के बीच में खाली जगह हो गया है तो इसको बंद कर दीजिए, और जो पुराने डेंटिस्ट हुआ करते थे उस खाली जगह को बंद कर देते थे, जिसकी वजह से भी टेढ़े मेढ़े जब पक्के दांत आते थे तो टेढ़े मेढ़े जाते थे। तो 8 साल 9 साल या 10 साल में बच्चों के दांतों के बीच में अगर खाली जगह नजर आता है तो उस खाली जगह को बंद नहीं करवाना है, लेकिन अगर सारे पक्के दांत आने के बाद भी ये प्रॉब्लम नजर आता है तो उसको जरूर बंद करवाना है।
1: और ये जो अवेयर होने की जो बात कर रहे हैं आप कि आदमी सतर्क रहे इसके लिए, तो ये अवेयरनेस कब से शुरू हो जानी चाहिए, खुद का या माता पिता का या अन्य लोगों का? तो अवेयरनेस कब से शुरू कर देनी चाहिए?
2: अगर हम ये समझे कि गार्जियन है, गार्जियन के बाद बच्चा है, अगर गार्जियन के दांतों में, अभिभावकों के दांतों में टेढ़े मेढ़े दांत हैं या उनके दांतों के बीच में खाली जगह है या उनको ऐसा लगता है कि वो भी जब बच्चे थे तो दांत बाहर दिखते थे, अभी भी बाहर दिखते हैं, तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चे, उनके बच्चे 8 साल या 9 साल के हैं, तो एक बार जाके जो स्पेसिफिक डॉक्टर है टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए या आपके आसपास में जो भी डेंटिस्ट हैं उससे इसकी सलाह लें, वो क्या आपको इस चीज़ के लिए बता रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपने अपने समझदारी का यूज करते हुए इलाज करवाएं।
1: अच्छा, तो ये अब आप बताते चलें कि अगर इस तरह की बात किसी को, किसी में दिखे कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो इसको ठीक करवाने के लिए ये कौन सी उम्र बेहतर होती है या भी किसी उम्र में इसको ठीक कराया जा सकता है?
2: अगर उम्र की बात करें तो आज जो एडवांसमेंट हुआ है डेंटिस्ट्री में, उसमें किसी भी उम्र में आप टेढ़े मेढ़े या बाहर निकले हुए जबड़े, टेढ़े मेढ़े दांत, इनका इलाज करवा सकते हैं। एक आइडियल एज हम लोग लेके चलते हैं कि अगर आपके जबड़े के ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जबड़ा बाहर हो गया है, जबड़ा अंदर रह गया है, तो उसके लिए आपको 7 साल 8 साल या 9 साल में ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम जो बच्चे का ग्रोथ हो रहा है उसमें उस पार्टिकुलर ग्रोथ को यूटिलाइज करके, ग्रोथ के डायरेक्शन को मॉडिफाई करके जबड़े को सही पोजीशन में ला दें। जहाँ तक टेढ़े मेढ़े दांत या की बात अगर हम लोग करते हैं या दांतों के बीच में खाली जगह, तो उसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। आप 50 साल की उम्र में भी इलाज करा सकते हैं, बशर्ते आपके हड्डी सही होनी चाहिए, जबड़े की हड्डी पर्याप्त होनी चाहिए, मसूड़ों का कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको सीवियर पायरिया है, दांत हिल रहे हैं और आप चाहें कि क्लिप लगा के या कुछ इलाज करके दांतों को एक लाइन मिला दिया जाए, तो वो नहीं हो सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये कुछ लोगों का कहना है कि बड़ा ये पेनफुल होता है।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता हा श्रूयंताम प्रवाचिका निधि ही झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः एकदिवसीय प्रवासे स्थास्यति। वडोदरा नगरे आयोजित समारोहे प्रधानमंत्री 35,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां विविधानां संरचना विकास परियोजनानां शिलान्यासं राष्ट्राय समर्पणं च विधास्यति। सशस्त्र बलानां युद्धाभियान क्षमतां वर्धयितुं रक्षा अधिग्रहण परिषदा एका महती गोष्ठी समायोजिता। रक्षा मंत्रिणा राजनाथ सिंहेन 10,000,000,000 कोटि रूप्यकाणां प्रस्तावाः अनुमोदिताः। निर्णयेनानेन सेनायाः आधुनिक वाहनानि, नौसेनायाः गैस टर्बाइन प्रणाल्यः, वायुसेनायाः च राडार निरोधक यंत्राणि अतिशीघ्रं दलेषु समाविष्टानि भविष्यन्ति। औद्योगिक गमनागमनं यातायात सम्मर्द समस्यामपाकर्तुं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणेन महती योजना रचिता। मंत्रिणः नंद गोपाल गुप्ता इत्यस्य सानिध्ये अभ्यसितेन प्रस्तावेन सामग्री वाहन वाहनानि, यात्री वाहनानि च पृथक पृथक मार्गैः यास्यन्ति। 75,100 मीटर विस्तृत मार्गेण गंगा एक्सप्रेस वे संपर्कः अतीव सुगमः सेत्स्यति। उत्तर प्रदेशे नद्यः उत्तुंग स्तरे प्रवहन्ति, अनेन 25 मण्डलेषु जलप्लावनं व्याप्तम्। बरेली लखीमपुर क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जनजीवनम् अस्तव्यस्तम् अकरोत्। स्थितेः गभीरतां विलोक्य बरेली प्रशासनेन विद्यालयानां अवकाशः घोषितः। प्रशासनीय अधिकारिणश्च आपदुद्धार कार्याय नियोजिताः। भारत लक्जमबर्ग आर्थिक संबंधान नूतनाम औन्नत्यम नयन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयलः लक्जमबर्ग उप प्रधानमंत्रिणा जेवियर बेटेल इत्यनेन सह मंत्रणाम अकरोत्। द्वयोः नेत्रोः संभाषणे लॉजिस्टिक्स अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रेषु संयुक्त प्रकल्पानां आरंभाय सहमतिः संजाता, येन उभयतः वाणिज्यिक संपदां विस्तारः संभविष्यति। नवदेहल्याम् आयोज्यमानं ब्रिक्स सम्मेलनं भारत ईरान संबंधानां कृते नूतन दृष्टिं प्रदास्यति। ईरान विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता इस्माइल बगाई अब्रवीत यत् राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन भारत प्रवासे द्विपक्षीय व्यापारं वर्धयितुं महतीं रणनीतिं रचयिष्यति। अनेन बहुपक्षीय वार्ता माध्यमेन मध्य पूर्व क्षेत्रे शांतिः सहकारश्च संवर्धयिष्यते। दक्षिण लेबनान इत्यस्य एकस्मिन् ग्रामे इज़राइल देशस्य वायव्याक्रमणे 12 जनाः मृत्युमुपगताः। रात्रौ कफर रुमाने इत्यत्र आवासीय गृहे आक्रमणानन्तरं द्वौ बालकौ चतस्रः महिलाः समेत्य 11 जनाः मृत्युमुपगताः। वाहनस्य उपरि द्वितीयेन प्रहारेण एकः पराचिकित्सकः अम्रियत। इज़राइलीय सेना अवदत् यत् देशस्य अधिकृत क्षेत्रे सैनिकानाम् उपरि ड्रोन आक्रमणस्य प्रतिकाररूपेण ईरान समर्थितस्य सशस्त्र समूहस्य हिज़्बुल्लाह इत्यस्य मूल सौकर्याणि स्थलानि अपि च शस्त्राणां स्थानान्तरणं कुर्वन्तः नैके आतंकिनः आक्रान्ताः। भारतीय पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रे नूतन इतिहासः रचितः। किर्गिस्ताने सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं विधाय भारते विश्व बेल्ट मल्लयुद्ध स्पर्धायाः मार्गः प्रशस्तः कृतः। अस्यां स्पर्धायां नागा मल्लकला जागतिक मञ्चे स्वकौशलं दर्शयिष्यन्ति, येन भारतीय क्रीडकानां उत्साहः द्विगुणितः भविष्यति इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विशाल परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मैरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध हैं। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघी ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। 6G नेटवर्क के विकास और वैश्विक पहल में भारत अब अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने अमरीकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में शामिल हैं। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। भारत की पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में स्लोवाकिया से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: A major highlight of PM's visit will be the dedication of three key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister will also flag off the freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargam and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail network. In addition, Mr. Modi will also lay the foundation stone for three railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees and three national highway projects costing around 1,780 crore rupees to ease the cognition and boost connectivity across Gujarat and Madhya Pradesh. He will also launch various civic and infrastructure projects of Gujarat government worth 2,600 crore, including a 110 megawatt floating solar plant at Kadana Dam and inauguration of PMAY housing units. Later, the PM will also visit Navsari to inaugurate the BJP's new AI-enabled high-tech office. Aparna Khun, Akashvani News, Ahmedabad.
2: In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest, GFF 2026, in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual FinTech conferences, is Potential to Impact Agentic AI Tokenization Quantum Trusted Connected Global Systems for Inclusive Finance. The GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The Defence Acquisition Council DAC has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. Luxembourg Deputy Prime Minister and Foreign Minister Xavier Bettel has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council, saying the body must be reformed to reflect the realities of the present global order. In an interview with a news agency, Mr. Bettel said, India's size and global importance makes its inclusion in an expanded Security Council necessary. He said that UNSC could be expanded to include major countries that currently do not have a permanent role, citing India and Brazil. India has joined the United States and 24 other countries in an international initiative aimed at shaping the development of next-generation 6G networks. In a social media post, the U.S. Department of Commerce said India had joined the U.S. and 24 other countries in an effort to ensure that next-generation networks reflect shared security interests, strengthen competitiveness, and drive innovation. Delhi government has intensified enforcement drives across major food markets in the national capital ahead of the festive season. Delhi Health Minister Dr. Pankaj Kumar Singh said that as part of the enforcement drive, over 2,300 kilogram of unclaimed koa, dhap and butter were confiscated and destroyed at the MCD dumping site at Majnuka Tila as per the provisions of the Food Safety and Standards Act 2006. Iran has highlighted India's role as a vital diplomatic hub ahead of Iranian President Masoud Pezeshkian's visit to New Delhi for the upcoming BRICS summit, expressing optimism that the grouping will provide a strong platform to deepen bilateral trade and strategic cooperation. Indian para archers will be in the spotlight as they look to make the most of the home advantage at the World Archery Para Series in Ahmedabad, with India set to feature in four gold medal finals today. In the Para Recurve Women's Team Gold Final, India's Bhavna and Pooja will take on China's Liang Chi Rong and Chen Yu, with the Indian duo aiming to secure the top prize on home soil. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आप लोगों को जानकारी दे देते हैं शेष कार्यक्रमों की।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले किए जाएंगे। 8:45 पर अपने स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन के तहत कुछ फिल्मी गाने। जोहार पलामू, हमारे यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता होंगे श्री प्रशांत गौरव। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की आज आप कड़ी सुनेंगे 1367 9:30 पर।

10:10 पर हम शामिल होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र में और 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। 10:10 से शाम 5:29 तक आप विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे और बीच बीच में आप समाचारों से ज्ञानवर्धन भी कर पाएंगे। जी हाँ, और शाम 5:30 हम अपने स्टूडियो से आपको एक बार फिर से जानकारी देंगे कार्यक्रमों की।

शाम 5:35 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के तहत चर्चा होगी, साक्षर होना कितना जरूरी, काक चेष्टा बको ध्यान, इस पर भी चर्चा की जाएगी। मोहम्मद जैद की वार्ता सुनेंगे आप, शिक्षा में खुलती नई राहें, पूर्व प्रसारित यह वार्ता होगी। प्रादेशिक समाचार शाम 6:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे और शाम 6:02 से प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। शाम 6:30 हम अपने स्टूडियो से कृषकों को संबोधित कार्यक्रम किसानवाणी के तहत आपको चर्चा सुनवाएंगे समसामयिक कृषि कार्य पर, यानी समसामयिक कृषि कार्य पर चर्चा होगी और आज की बात होगी बकरी पालन आमदनी का एक सशक्त माध्यम, इस पर आज की बात की जाएगी। एक किसान से भेंटवार्ता सुनेंगे आप, कपिल देव ठाकुर, तुकबेरा, नावा बाजार, पलामू, बातचीत करेंगे संतोष कुमार, पूर्व प्रसारित यह भेंटवार्ता होगी। फलों उद्यान के लाभ, आज की नसीहत होगी इस विषय पर। मौसम विभाग से प्राप्त मौसम की जानकारी, पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव, आप इसी कार्यक्रम में जान पाएंगे। शाम 6:55 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र में। प्रादेशिक समाचारों का समय 7:00, 7:10 पर जिले में आज कल, 7:15 पर अपने स्टूडियो से सुनवाएंगे आपको फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक रंग के तहत कुछ फिल्में गाने। खुला आकाश सुनेंगे आप काव्य पाठ स्वरचित कविताएं, 7:45 पर कवि होंगे अमीनुल्लाह अंसारी। फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से के तहत सुनवाएंगे कुछ फिल्में गाने 8:00। 8:30 सुनेंगे आप देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम देशगान के तहत देशभक्ति गाने और रात्रि 8:45 पर हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार 9:00, उर्दू समाचार 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। विविध भारती के तहत सुनेंगे आज का फनकार रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम अपने स्टूडियो से रजनीगंधा कार्यक्रम के तहत सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने रात्रि 10:00। रात्रि 11:00 शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी समाचारों के लिए, अंग्रेजी समाचारों के लिए, और सभा समापन करेंगे हम रात्रि के 11:10 पर। तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित, अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत गायन।

राग भैरव बहार विलंबित जुमरा द्रुत तीन ताल में। संगत कलाकार हैं तबला पर ओंकार गुलवाड़ी, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वाला वालकर, तानपुरा पर सुहास व्यास और श्रीराम सिंत्री।

अभी आप सुन रहे थे गायन, कलाकार थे पंडित सी आर व्यास, राग भैरव बहार। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का राग रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता के तहत आइए सुनवाते हैं चंद गौसलें अशोक खोसला की आवाज़ में।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पस जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
4: श्री बेटन ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटन ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में दो तिहाई बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटन ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प
6: योजना उन नौजवानों के

0: आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
6: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के

0: भावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज्य का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satya Niketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated

0: जनरेटर को क्या हुआ?
1: अरे माँ, तेल खत्म हो गया है और क्या।
0: अच्छा, दो कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या? वो भी तो दो दो जान संभाल रही है। बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेएसएससी सीजीएल नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक बरकरार। पेपर लीक मामले में पटना से एक और आरोपी गिरफ्तार। छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा का 4 दिवसीय प्रदर्शन आज से। सरकार ने कहा छात्रों को मिलेगी माफी, हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को पेपरलेस बनाने की कवायद तेज। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव ने रिम्स में सीडैक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। रांची और आद्रा रेल मंडल में ब्लॉक के कारण आज हटिया सांकी पैसेंजर समेत 4 ट्रेनें रद्द। चक्रधरपुर गोमो मेमू अब महुदा तक ही चलेगी। और मौसम विभाग ने राज्य में 9 और 10 सितंबर को भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 11 सितंबर तक वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर अपनी अंतरिम रोक बरकरार रखी है। कल न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व में लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब दाखिल करने की नई तारीख दी है। अब दोनों पक्षों को 15 सितंबर तक अपना फाइनल जवाब अदालत में सौंपना होगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी को बड़ी सफलता मिली है। सीआईडी ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोप में पटना के रहने वाले राजन कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने कई परीक्षार्थियों को पश्चिम बंगाल के एक होटल में ले जाकर परीक्षा से पहले प्रश्न और उत्तर रटवाए थे। इस गिरफ्तारी के बाद अब इस बड़े परीक्षा घोटाले के तार बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़ते दिख रहे हैं। प्रदेश भाजपा आज से राज्यव्यापी 4 दिवसीय आंदोलन शुरू करने जा रही है। भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के पहले दिन आज रांची, दुमका, हजारीबाग सहित कई जिलों में उपायुक्त और एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रदेश भाजपा के आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने साफ किया है कि प्रदर्शन कर रहे मासूम छात्रों को राज्य सरकार पूरी तरह माफ कर देगी, लेकिन छात्रों की आड़ में हुड़दंग मचाने वाले भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: हम युवाओं के साथ हैं, राहुल जी के कारण ही इतना धरना टूट गया। सरकार ने बात मानी और हम लोग जांच करा रहे हैं। छात्रों का अहित जो भी करेगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। दूसरी बात, एफआईआर जब सुप्रीम कोर्ट ने जेएनजी को सबको माफ कर दिया है तो यहाँ भी हम लोग सबको माफ कर देंगे, लेकिन कुछ जो बीजेपी के लोग हैं तो हम जानते हैं कि उपद्रवी है, ये युवा नहीं है, ये दंगाई लोग है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए।
0: राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार के आकस्मिक निधन के बाद राज्य के राजनेता स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रिम्स में रूटीन कार्डियक चेकअप कराया, जहां उनके सभी पैरामीटर सामान्य मिले। मंत्री ने अपील की है कि सीने की बेचैनी को गैस समझकर नजरअंदाज न करें।
2: वैसे नियति से तो कोई लड़ नहीं सकता है, जो लिखा है वो होना है, लेकिन वो जो 2 घंटे का गोल्डन आवर था, जैसे ही चेस्ट पेन हुआ और उनकी पत्नी बोल भी रही थी हॉस्पिटल दिखलाते, लेकिन वो कहते रहे कि गैस का पेन हो सकता है। जहां 50 से अधिक आपकी उम्र हुई, थोड़ा भी चेस्ट पेन हुआ या अनईजी महसूस हुआ तो आपको हॉस्पिटल रश कर जाना चाहिए।
0: हजारीबाग में एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना क्षेत्र में सीआईएसएफ ने अवैध कोयला खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में सुरक्षा बल ने अवैध कोयले से लदे एक एलपी ट्रक और 2 हाइवा डंपर जब्त किए हैं। प्रशासन ने वाहनों के मालिकों और कोयले के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट

0: साइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को पेपरलेस और डिजिटल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। अस्पतालों में लंबी कतारों से मुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग सी डेक सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहा है। संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिम्स और सदर अस्पताल में ऑनलाइन मोबाइल अपॉइंटमेंट विस्तार पर सहमति बनी।
1: डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने जो है एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है CDEC HMIS। तो बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सारी गतिविधियां इसी सॉफ्टवेयर पे होती हैं। डिपार्टमेंट का उद्देश्य ये है कि हम लोग पेपरलेस होना चाहते हैं और पेशेंट के लिए भी जो है सारी चीजें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल में हो जहां तक संभव हो।
0: रांची पुलिस ने चतरा के लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ को सकुशल बरामद कर लिया है। पहले उनके अपहरण की अफवाह फैली थी लेकिन सिटी एसपी पारस राणा ने स्पष्ट किया कि यह मामला शराब के नशे में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई हिंसक मारपीट का है।
2: प्रामे फैसी अभी तक यही सारे फैक्ट सामने आए कि शराब के नशे में कुछ लड़कों ने बाकी लड़कों के साथ कुछ धमकी भरी बातें बोली हैं और इसी बात पर फिर आगे जो है झगड़ा वो एस्केलेट हो गया है। पुलिस FIR दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई जो उसमें विधिवत कर रहे वो विधिवत कार्रवाई करें।
0: रांची और आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों और ब्लॉक के कारण आज कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। हटिया सांकी पैसेंजर सहित चार ट्रेनें आज पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं वर्धमान हटिया मेमू गोमो तक, खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस आद्रा तक और आसनसोल रांची मेमू मूरी स्टेशन तक ही चलाई जाएगी। इसके अलावा चक्रधरपुर गोमो मेमू एक्सप्रेस भी 8, 11 और 13 सितंबर को गोमो की बजाय महुदा स्टेशन पर ही समाप्त होगी और वहीं से वापस खुलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने रांची मौसम केंद्र का विशेष दौरा किया है। केंद्र के निरीक्षण के बाद DG ने घोषणा की है कि आधुनिक तकनीकों और नए उपकरणों की मदद से साल 2027 तक झारखंड में मौसम का पूर्वानुमान और भी अधिक सटीक और समयबद्ध हो जाएगा।
3: हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है झारखंड में इसके भी हमने मॉनिटरिंग किया कहाँ का इंस्ट्रूमेंट्स है और कहाँ कहाँ हम इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ जो मॉडल्स डेवलप करना है, डिसीजन सपोर्ट डेवलप करना झारखंड स्टेट के लिए, इसके बारे में भी बातचीत हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि मौसम केंद्र रांची एक अग्रणी मौसम केंद्र है।
0: मौसम विभाग ने राज्य में 9 और 10 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में 11 सितंबर तक मॉनसूनी बारिश का असर रहेगा। इस दौरान वज्रपात और तेज हवाओं की भी आशंका जताई गई है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पेपर लीक मामले में परीक्षार्थियों को होटल में प्रश्न रटवाने वाले आरोपी की पटना से गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लेने वाला दलाल धराया। दैनिक भास्कर की सुर्खी है अब ग्रेजुएशन से रिसर्च की शुरुआत, 221 कॉलेज विश्वविद्यालय में बनेंगे आइंस्टीन क्लब। हिंदुस्तान ने लिखा है झारखंड में धनबाद की हवा सबसे साफ, रांची पिछड़ी। प्रभात खबर के शब्द हैं यूनिवर्सिटी के बाहर चतरा विधायक के बेटे को पीटा उठा लिया, पुलिस सक्रिय हुई तो अरगोड़ा चौक पर छोड़कर भाग गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। JS SC CGL नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक बरकरार। पेपर लीक मामले में पटना से एक और आरोपी गिरफ्तार। छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा का 4 दिवसीय प्रदर्शन आज से। सरकार ने कहा छात्रों को मिलेगी माफी, हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को पेपरलेस बनाने की कवायद तेज। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव ने रिम्स में सीडेक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। रांची और आद्रा रेल मंडल में ब्लॉक के कारण आज हटिया सांकी पैसेंजर समेत चार ट्रेनें रद्द। चक्रधरपुर गोमो मेमू अब महुदा तक ही चलेगी। और मौसम विभाग ने राज्य में 9 और 10 सितंबर को भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 11 सितंबर तक वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। और इसके

0: साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बहन, मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है। रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता।
2: कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है?
1: विटामिन ए? वो क्या होता है बहन?
2: विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है?
1: 4 वर्ष।
2: अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ। ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: तुम्हारी माताजी का स्वास्थ्य अब कैसा है?
5: क्या बताऊं भाई, कल माताजी के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में ले गया था, पर वहां तो डॉक्टरों ने उनकी ठीक से जांच ही नहीं की। अब आम आदमी कहां फरियाद करे?
4: अरे डायल करो 104 नंबर।
5: वो क्या है भाई?
4: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन, जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों से संबंधित शिकायत, जैसे अस्पताल में डॉक्टर का न होना, दवाई का न होना या अन्य कोई गड़बड़ी की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।
6: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। श्रोता मित्रों, अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का। गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले तमाम साथियों का स्वागत है। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त निर्मला का नमस्कार। यादों के झरोखों से अक्सर हम उन्हें निहारा करते हैं, यादों के झरोखों से अक्सर हम उन्हें निहारा करते हैं, कभी तो पहुंचेगी सदा हमारी, यही सोचकर अक्सर उन्हें हम पुकारा करते हैं। कभी गीतों के स्वरों में, कभी संगीत की धुनों पर खिलखिलाती सी आवाज़ जब गूंजती है हमारे कानों में, तो हम अक्सर भूल जाते हैं दोस्तों कि वो अब नहीं है, वो अब नहीं है। ऐसा लगता है वो आसपास ही हैं, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, स्वर लहरियों में, हर एक साख पर, हर एक पात पर, चुलबुल शोक अंदाज में चहकती हुई चिड़।

प्यासी हर पल पल पल, और फिर दिल कहता है कि वो कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, वो तो हर दिल में है, हर दिल की धड़कन में है, धड़क रही हैं गीतों जैसे।

जी हाँ दोस्तों, आशा ताई की आवाज़ का जादू ता उम्र छाया रहा और इस जादू के तिलिश्म से श्रोता कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे, ये मेरा दावा है। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, रोमांटिक, कैबरे, पॉप, गज़ल, शास्त्रीय गायन, सभी तरह की विधाओं में पारंगत बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं हमारी आशा ताई। उम्र उन पर कभी भी हावी नहीं हुआ। उस दौर से लेकर इस दौर की नायिकाओं के लिए उन्होंने अपने स्वर का जादू बिखेरा। वो बहुत ही हसमुख मजाकिया किस्म की थीं, ऐसा उनके साथी कलाकारों शुभचिंतकों का कहना है। वैसे भी उनके चेहरे से बच्चों सी शरारत हमेशा झलकती थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, सभी से प्यार करती थीं। वो बिल्कुल पानी के जैसी थीं, हर रंग में रंग जाने वाली।

दोस्तों, आशा जी ने माई फिल्म में अभिनय कर एक और रंग से परिचय कराया। जी हाँ, उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी वो मुरझाई नहीं, चहकती ही रहीं, मुस्कुराती ही रहीं और हमेशा ऐसे ही अपने प्रशंसकों की यादों में खिलखिलाती रहेंगी। उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चलते चलते सुनिए माई फिल्म का ये गाना।

आशा ताई को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वो हमेशा यूं ही दिलों में बसी रहेंगी। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है जोहार पलामू कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का। संयोजन करता है श्री प्रशांत।

जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में। विविधता में ही भारत की असली ताकत है, यह सुविचार विलक्षण प्रतिभा के धनी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के हैं। जी हाँ, आज जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए, उनकी विचारधारा थी कि मानवता, प्रेम, समानता से परिपूर्ण हो समाज। उन्होंने अपने गीतों और विचारों से समाज में व्याप्त बुराई, गरीबी, असमानता, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो चाहते थे एक वर्ग विहीन समाज जहां शोषण ना हो, समानता हो, भाईचारा हो, शांति हो। उन्होंने असमिया, बंगाली, हिंदी भाषाओं में विशेष रूप से कई फिल्मों के गीत और संगीत दिए और कुछ में उन्होंने गायन भी किया। जी हाँ, हिंदी फिल्म की यदि हम बातें करें तो रुदाली एक ऐसी फिल्म थी जो जिसके गाने, गीत, संगीत काफ़ी पसंद किए गए, काफ़ी लोकप्रिय हुए थे और इसके सभी गाने लगभग लोकप्रिय थे। चाहे वो समय वो धीरे चलो, मौला मौला, बीते ना बीते रहना, ये सारे गाने। और इस फिल्म की अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के अभिनय की भी काफ़ी सराहना हुई थी, कई पुरस्कार भी इस फिल्म को मिले थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार भूपेन हजारिका। तो चलिए इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। और अब बातें कर लेते हैं मौसम की। मौसम की यदि हम बातें करें तो मौसम विभाग ने 9 और 10 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वज्रपात, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। जी हाँ, तो मौसम के अनुसार सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग बार बार हमसे अपील करता है, सुझाव देते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ श्रोताओं, तो ये तो हुई मौसम की बातें। और चलिए एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की ओर।

दोस्तों आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और आज की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र। सन 1320 में आज ही की तारीख को गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना था। 1331 में स्टीफन उरोस चतुर्थ ने खुद को सर्बिया का राजा घोषित किया। टुमू किले का युद्ध हुआ था। मंगोलिया ने चीन के सम्राट को बंधक बनाया था आज ही की तारीख को। इंग्लैंड में लिचफील्ड शहर का निर्माण हुआ था आज ही की तारीख को सन 1553 में। और मैक्सी मिलियन को हंगरी का राजा चुना गया था सन 1563 में आज ही की तारीख को। चीन और रूस ने नेटर्स जिंक नेचुरल की संधि पर हस्ताक्षर किए थे आज ही की तारीख को। टेक्सास के गेलवेस्टोन में चक्रवाती और ज्वारीय तूफान से 6,000 लोगों की मौत हो गई थी सन 1900 में आज ही की तारीख को। जिनेवा में कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने किए थे हस्ताक्षर आज ही की तारीख को 1952 में। चीन ने भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ किया आज ही की तारीख को सन 1962 में। और जाने माने व्यवसायी विजयपत सिंघानिया अपने माइक्रो लाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद आए थे आज ही की तारीख को। अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पैट्रिक रॉफ्टर को प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब मिला था आज ही की तारीख को। और आज ही की तारीख को सन 2001 में निर्धारित 13वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेज़बानी बांग्लादेश को सौंपी गई थी। सन 2000 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई थी। और इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे आज ही की तारीख को। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और चलिए एक बार फिर लौटते हैं गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको एक गीत।

जी हाँ दोस्तों, अतीत में जो गुजर गया उसे याद करके यदि वो अच्छी यादें हैं तो उसे सहेजिए, और यदि बुरी यादें हैं तो उसे याद करके आंसू बहाते रहने से कोई फ़ायदा नहीं। जी हाँ, इससे हमारा जो अभी का समय है वो ख़राब होता है, और आगे क्या होगा ये तो हम जानते ही नहीं। फिर आने वाले समय के लिए सोच कर क्यों परेशान होना। इसीलिए जो ये वक्त है, जो ये पल है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसमें आप अपने अनुसार जी लीजिए भरपूर जी। ना अतीत की चिंता करके परेशान होइए कि हमने ये खो दिया, और ना ही आने वाले समय की चिंता कीजिए कि पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। बस यह हम मान कर चलिए हमेशा कि जो भी होगा अच्छा होगा, और अच्छा हो रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, हम भी इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सेहत की बातें कर लेते हैं, क्योंकि जब हम चिंता में घुलते हैं, परेशानियों में घिरते हैं, अपनी मानसिक उलझनों में उलझ जाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य तो ख़राब होता ही है। इसलिए क्या फ़ायदा ये सब कुछ सोच कर और चिंता करके। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आइए आज सेहत के बारे में हम घर की औषधियों में, यानी कि हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिसका प्रयोग तो हम करते ही हैं सब्जियों में किसी न किसी तौर पर, लेकिन उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, ये शायद हम नहीं जानते। लेकिन हमारी जो दादी थी, नानी थी, जो बुज़ुर्ग महिलाएं थी, वो शायद जानती थी, तभी तो उन्होंने इसे शामिल किया, और हम भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो आज बातें जायफल की। जी हाँ, जायफल खाने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि जायफल पाचन रस और एंजाइम को बढ़ाता है। इससे गैस, अपच और दस्त जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। जायफल खाने से यदि रात में एक चुटकी जायफल का पाउडर ले लिया जाए गुनगुने दूध में मिलाकर, यानी एक चुटकी जायफल का पाउडर गुनगुने दूध में मिलाकर रात को पिया जाए, तो उसको पीने से मानसिक तनाव कम होता है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है। यानी जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या होती है, उन्हें ये फायदेमंद होता है। जायफल में एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन रोधी और एनालॉजिसिक गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द, सर दर्द, मांसपेशियों की जकड़न में काम आते हैं, यानी इसे ये कम करते हैं। त्वचा की जो सेहत है, यदि हम जायफल को चंदन गुलाब जल के साथ घिसकर चेहरे पर लगाएं, तो दाग धब्बे और चेहरे में यदि जलन हो रही है स्किन में, तो वो दूर हो जाती है। यदि मुंह से दुर्गंध आती हो और दांत में दर्द होता हो, तो इसका चूर्ण या हल्का तेल, जो इसका तेल आता है, दांत दर्द और मुंह के बैक्टीरिया से लड़ने में यह काफ़ी मददगार होता है। जायफल खाने में सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, क्योंकि एक तेज़ औषधि है। हमेशा एक चुटकी ही इसका उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में यदि सेवन कर लिया जाए तो उससे चक्कर, उल्टी, घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसका सेवन करना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में। वैसे भी कोई भी औषधि तत्व जो होते हैं, उसकी जो मात्रा होती है सीमित ही रखना चाहिए। सीमित मात्रा में सेवन करने से लाभ होता है, और यदि हम अधिक ले लेंगे तो उसका तो फिर नुकसान होगा ही। जायफल को तो छोटे बच्चों को भी घिस के घूटी के तौर पर माताएँ पिलाती हैं, क्योंकि यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ठंड के मौसम में काफ़ी राहत देता है। तो इस तरह हमारे रसोई घर में ही बहुत सारी ऐसी मसाले हैं जो औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और उसे हम अपने भोजन में शामिल भी करते हैं। हाँ, ये नहीं जानते कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। यदि हम ये जान गए तो फिर अपनी सेहत का हम बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो ये तो हुई सेहत से जुड़ी हुई बातें, और चलिए एक बार फिर गीत संगीत की ओर चलते हैं, और जीवन के जो पल हैं उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए दोस्तों। जैसा कि अभी हमने कहा कि क्यों चिंता करनी कि हमने क्या खो दिया, अतीत के पन्नों में कितना कुछ समेट गया, और आने वाला समय कैसा होगा ये तो हम जानते ही नहीं। इसलिए आइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सा आनंद रहिए, सुनिए यह गाना।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों इसी के साथ अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, तो इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त निर्मला को दीजिए विदा। नमस्कार, जोहार।
7: जोहार पलामू।

आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर था निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता थे प्रशांत गौरव। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, भाग संख्या है 1367।

0: संग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह चंघेल, मूरज चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियाँ, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ NCERT की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है। वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी, आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।

0: हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: लेकिन डाइन कौन देगा?
5: जी हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
2: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
5: 1, 2, 3 सब छुप गए ना। 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
3: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
6: मोहित, अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
3: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
5: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
3: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
5: बबली तुम अलमारी के पीछे हो?
6: धप्पा!
5: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
3: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
5: मारिया तुम पलंग के नीचे हो?
7: नहीं मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
6: अंदर छुपा हूँ।
5: मारिया
6: धप्पा!
7: अरे नहीं।
3: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
8: दादी दादी दादी, हिलना मत, जीत आया है, वो मुझे धप्पा बोल देगा।
5: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है। अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
6: सिमरन धप्पा,
8: फिर पकड़ लिया।
5: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
3: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे थप्पा दिया।
2: जी थप्पा!
0: ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक, दो, तीन।
3: छुपन छुपाई, है ना मजेदार खेल? तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ, ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
5: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापक गण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
6: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
7: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
8: नमस्कार।
7: नमस्कार।
6: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण यह संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
2: जी जी
6: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
2: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
8: जी,
2: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
8: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
2: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
8: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
7: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
2: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई, इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
7: अच्छा।
2: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
6: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
7: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
6: अच्छा।
7: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
2: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
7: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
2: जी,
7: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
2: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी, उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
7: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
6: जी।
7: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
2: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
7: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
6: जी। नीलम जी। तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
9: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
7: अच्छा, एक बात बताओ
9: जी,
7: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
9: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
7: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
8: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
9: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
7: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग-अलग दिखाई देता है।
9: जी,
7: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे-धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं।
9: जी,
7: पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
9: अच्छा,
7: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
9: ऐसा विकार होता क्यों है?
7: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
9: हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
7: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हां
8: जी मैडम।
7: हां, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें।
9: जी,
7: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
9: जी,
7: केवल बच्चों को और उनके माता-पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
9: जी ठीक है।
6: हां दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
9: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
10: नमस्ते
6: डॉक्टर पुष्पा। ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
7: अच्छा अच्छा, सीमा कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
10: मैं 7वीं में पढ़ती हूं।
7: रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी मां से विस्तार में बातचीत की है।
7: अच्छा,
0: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
9: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है। ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है। गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
0: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है। कभी-कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
7: अच्छा,
0: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
9: डॉक्टर पुष्पा, कभी-कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
0: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
9: जी,
0: कुछ लोगों का शायद यह मानना है कि यह कोई छूत की बीमारी ना हो,
7: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
9: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
10: हां समझ तो आता है पर लिख नहीं सकती।
0: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
7: अच्छा,
0: और ये साफ-साफ बोल नहीं पाती, इसलिए लोग इसकी बात ठीक-ठीक समझ नहीं पाते।
9: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
0: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
7: अच्छा,
0: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
9: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
7: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है। क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
9: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
7: देखिए, इसको हर कार्य छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर क्रमानुसार लगाकर थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
6: जी, आज हमने तीन प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
7: जी,
6: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
7: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
11: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
6: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
11: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए।
7: नमस्ते।
6: नमस्कार। नमस्कार।
5: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
12: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना।
13: हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
14: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
15: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
16: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
4: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार को और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत, अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉक्टर यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का मार्ग खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी सीखने से वंचित ना रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न स्रोतों से ज्ञान हासिल करने के महत्व पर बल दिया। संस्कृत श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी कई फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को हर क्षेत्र से उपयोगी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और खेलों में अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेंगी, भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया से और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम इराक से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. More from our correspondent.
2: A major highlight of PM's visit will be the dedication of three key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister will also flag off the freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargam and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail network. In addition, Mr. Modi will also lay the foundation stone for three railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees and three national highway projects costing around 1,780 crore rupees to ease the cognition and boost connectivity across Gujarat and Madhya Pradesh. He will also launch various civic and infrastructure projects of Gujarat government worth 2,600 crore, including a 110 megawatt floating solar plant at Kadana Dam and inauguration of PMAY housing units. Later, the PM will also visit Navsari to inaugurate the BJP's new AI-enabled high-tech office. Aparna Khun, Akashvani News, Ahmedabad.
0: In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. Luxembourg Deputy Prime Minister and Foreign Minister Xavier Bettel has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council, UNSC, saying the body must be reformed to reflect the realities of the present global order. In an interview with the news agency, Mr. Bettel said, India's size and global importance make its inclusion in an expanded Security Council necessary. He said the UNSC could be expanded to include major countries that currently do not have a permanent role, citing India and Brazil.
3: A reform of the Security Council where we would be able with a two-third majority to overrule veto, and then we can open the Security Council. If we say now we need to have 10 members because for me India belongs, it's for sure, look the size of the country, the importance of your country, is it, why is India still not in? So or we take away the Security Council, which will be impossible because they won't agree, or we make it a bit bigger.
0: India has joined the United States and 24 other countries in an international initiative aimed at shaping the development of next generation 6G networks. Iran has highlighted India's role as a vital diplomatic hub ahead of Iranian President Masoud Pezeshkian's visit to New Delhi for the upcoming BRICS summit, scheduled to be held in New Delhi on September 12 and 13, expressing optimism that the grouping will provide a strong platform to deepen bilateral trade and strategic cooperation. Delhi police has arrested three persons in connection with the building collapse at Satyaniketan in New Delhi while intensifying its probe into the incident that claimed seven lives. More from our correspondent.
4: Delhi police has arrested alleged owner of the building, her husband and her son, in connection with the incident that occurred on 6th of this month. The couple was sent to 14 days of judicial custody, while the son was sent to 2 days of police custody.

0: जरूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही जरूरी है, उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए।
1: जी
0: ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज रहे, या आप उसे
1: कम,
0: खाने में ना रखें।
1: अच्छा, ओके,
0: आप ज्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में, बच्चों को सही मात्रा में, छोटे छोटे अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल हैं, वो होना जरूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल, पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी-कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों
1: कैसे
0: को
1: खाएं।
0: देना चाहिए या नहीं। जो पहले के जमाने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते हैं कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है। इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी

0: बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या फल सब्जियां सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
1: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
0: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियां। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं
1: जी।
0: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, हम उसको जो
1: पत्ती
0: वो
1: वाली
0: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है ऐसी वाली, बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
1: अच्छा,
0: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी ही मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पर खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में। नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दो चीजें अलग अलग है
1: जी, जी।
0: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं
1: जी।
0: नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गया। अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है। वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इशू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है उसके बीज होते हैं पंकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
1: बढ़ जाता है।
0: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल
1: जी जी,
0: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट

0: और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
0: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है। जो मौसम की जो सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी, उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं?
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपके सही विटामिंस मिनरल्स, आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया, थोड़ा सा उल्टी होना, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहाँ पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही, दूध, सलाद, ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं, जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
0: जी, ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खास तौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है?
1: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
0: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
1: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है, और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है। मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स, जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
0: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
1: जी,
0: कौन सा?
1: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई सक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
0: सुनते ही ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाते हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: सर, ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को आईबीएस आईबीडी ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट, और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है
0: जी।
1: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
0: अच्छा,
1: दूसरी चीज आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा
0: जी।
1: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है, ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया, या फिर

0: बूझ हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती है
1: जी, ब्लोटिंग होने
0: बहुत
1: लगती
0: ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती
1: है
0: है,
1: जी।
0: तो आपकी शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप तीन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपके खाने का समय और मात्रा। ये तीन चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
1: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है आईबीएस, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, आईबीएस, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाएं, और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: आईबीएस और आईबीडी थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है। आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो
1: जी,
0: और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2-2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
1: जी, बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
0: बहुत ज्यादा, बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी
1: जी,
0: ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
1: डिप्रेशन,
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई
1: जी
0: बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है।
1: जी
0: जैसे कि आपको एडीएचडी है, डिप्रेशन है, एमडीडी है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है।
1: जी
0: मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे एडीडी है या एडीएचडी है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितने विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे
1: बिल्कुल
0: ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा,
1: जी
0: आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
1: जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं। अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई, खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और
0: चलो
1: चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी।
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग, जैसे मैंने कहा, जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसके वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपकी थाली में कितने रंग हैं, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
0: जी बिल्कुल।
1: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है, तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: जी जी जी।
1: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं, हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गर्म मसाले का पानी हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
1: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, हम यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं।
0: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल,
1: हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहां पे दिक्कत आ जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
0: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है, लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर, लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है, हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा, तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
1: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है।
0: जी, जी।
1: कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग, मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
0: जी जी।
1: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
0: जी बिल्कुल।
1: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहां बाहर की खेलकूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है। तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1000-2000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना ज़रूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना ज़रूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं। आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं

0: तो चीला बना दीजिए या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी, एक गाना सुने?
0: जी
1: कौन सा?
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती है, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से, तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गरम उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला कर लो,
0: अमरूद,
1: तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आंवला एक चीज है, उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया।
0: करौंदा,
1: तो करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
0: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किसमें होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जितने हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं, बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
0: जी जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है?
1: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है, तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
0: ज्यादा
1: थाली में ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक टेबल सॉल्ट बेस्ट, आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है ना आपको काला नमक पिंक नमक सेंधा नमक की जरूरत है।
0: जी,
1: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से
0: दाल में भी बिल्कुल।
1: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं
0: जी बिल्कुल। अदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: से लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: तन्हा दिल इस एल्बम से गीत अभी आपने सुना, शान की आवाज में उन्हीं का लिखा गीत और म्यूजिक राम संपत का।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: धड़कन, ये था एल्बम का नाम। पिनाज मसानी की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। मुश्ताक अहमद ख्याल ने इसे लिखा।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

ये चांद मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है।

सोनू निगम की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे जान एल्बम से, फैज अनवर ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ

0: भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 0.5% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए सुनते हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: द ग्रेट गैम्बलर, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कंचन, मनोहर उदास और आनंद की आवाजों में ये गीत कुर्बानी फिल्म से अभी आपने सुना। इंदिवर ने इसे संगीत दिया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गड्डले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। आज जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिवस है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें

0: आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा एआर रहमान की तर्ज।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो

0: तो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है, उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
0: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: बाजीगर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में रानी मलिक ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: दोस्ताना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल संपन्न होता है।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
0: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भर्ती गड़बड़ियों की सीबीआई जांच को लेकर भाजपा का 4 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन शुरू। रांची समेत कई जिलों में डीसी एसपी कार्यालयों का घेराव। धनबाद में भीषण भूधसान से कई घर जमींदोज, एक बच्चे की मौत और आधा दर्जन घायल। स्थानीय लोगों ने मुआवजा और पुनर्वास के लिए मुख्य सड़क किया जाम। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी शुभकामनाएं, कहा साक्षरता ही सशक्त समाज और विकसित भारत की आधारशिला। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो सहित 11 जिलों के लिए जारी की तात्कालिक चेतावनी, अगले 3 घंटों में वज्रपात और बारिश की आशंका। और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन के बाद 2 दिनों का शोक समाप्त। सिमडेगा में 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले आज से दोबारा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच और प्रदर्शनकारी छात्रों पर से मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर प्रदेश भाजपा का 4 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो गया है। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने समाहर्ता परिसर का घेराव किया। इस दौरान पार्टी के मुख्य सचेतक विधायक नवीन जायसवाल ने युवाओं के हक में अपनी आवाज बुलंद की।
1: जिस तरह से तुगलकी फरमान मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में लिया और एक बार में सभी एग्जाम को रद्द कर दिया, इसका मतलब ही यही है कि जो छात्र नौकरी कर रहे हैं वो हाईकोर्ट जाएंगे, उनको स्टे मिल जाए। कितना राज्य सरकार गंभीर है कि जब हाईकोर्ट में मामला था तो उनका एजी अटेंड नहीं होता है, कोई सीनियर लॉयर अटेंड नहीं होते हैं। कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, ना छात्र को न्याय मिलेगा, ना जो नौकरी कर रहे हैं उनको न्याय मिलेगा।
0: भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर भाजपा के राज्यव्यापी आंदोलन पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और मीडिया कन्वीनर डॉ. एम तौसीफ ने आरोप लगाया है कि भाजपा युवाओं के भविष्य पर केवल राजनीति कर रही है और उसका मकसद छात्रों को गुमराह करना है।
2: खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को पार्लियामेंट से पास किया, इसलिए पास किया कि जिस पैसे से झारखंड राज्य का विकास होता था उस पैसे को उनको रुकवाना था। अब उन्हें ये डर लगता है कि जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो उनसे क्षेत्रवासी सवाल करेंगे। अब मुद्दे को ये भटकाने के लिए छात्रों के नाम पे ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते।
0: धनबाद के सिजवा में आज सुबह हुए भीषण भूधसान के कारण कई घर जमींदोज हो गए, जिसमें मलबे में दबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं विधायक शत्रुघ्न महतो ने इसके लिए बीसीसीएल और जिला प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है।
3: लगातार घटना घटने के बाद सरकार सोई है, प्रशासन सोई है, विशेष मदद सोई है। उनको पता है कि कहाँ अवैध माइनिंग चला, कहाँ लीगल माइनिंग चला है। चूंकि उन लोगों द्वारा सारा माइंस बांटा गया है जो कहाँ किसको उपचार चलाना है, कहाँ किनको माइनिंग करना है, और सब पता है कि वहाँ घटना घटने वाला है। तो समय रहते इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता है प्रशासन सरकार, चाहे आपका विशेष प्रबंधन। हाल के दिनों में लगातार घटना घट रही है, सब पता है।
0: अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर कहा कि साक्षरता ही सशक्त समाज और विकसित भारत की आधारशिला है। मंत्री ने संकल्प व्यक्त करते हुए आह्वान किया कि शिक्षा का प्रकाश हर घर और बच्चे तक पहुंचे। रिम्स में मरीजों और परिजनों के साथ होने वाली झड़पों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। निदेशक डॉ. डी के सिन्हा की बैठक में क्रिटिकल क्षेत्रों में 24 घंटे सुरक्षा गार्डों की तैनाती और क्विक रेस्पॉन्स टीम के गठन का निर्णय लिया गया है। संवाद के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग होगा।

0: जारी हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के जंगलों में एक बार फिर गिद्धों की रौनक लौट आई है। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों के कारण जंगलों में गिद्धों के बड़े झुंड फिर से दिखाई देने लगे हैं। DFO मौन प्रकाश ने बताया कि इस विलुप्त प्राय प्रजाति की वापसी से वन्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी।
1: हजारीबाग में वल्चर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। वल्चर्स आज हजारीबाग के 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग 350 से लेकर 400 तक पाए जाते हैं। पूरे झारखंड में वल्चर्स की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 5 प्रजातियां हमारे हजारीबाग में। तो वल्चर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है देश के अंदर, जो बहुत पहचान रखता है और यहाँ पे इसकी टोपोग्राफी ये फेवर करती है।
0: राज्य के दृष्टिबाधित पर्वतारोही शेखर गोप ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए हिमालय की 20,000 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। उनके साथ ही पर्वतारोही धीरज कुम्हार ने भी 16,732 फीट की ऊंचाई नापने में सफलता पाई। शेखर गोप ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी शारीरिक अक्षमता आड़े नहीं आ सकती।
2: तो ऑक्सीजन काफी कम था वहाँ पर और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊंगा, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि नहीं जाऊंगा तो मुझे वो सारा दिन याद आता है जो हम लोग काफी सारा मेहनत किए थे दलमा पहाड़ में चढ़ने के लिए। टाटा स्टील फाउंडेशन ने मुझे भेजा, बस अपने ऊपर हौसला रखने से सब होता है, तो हम लोग कामयाब होकर दिखाए।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 0.5% की गिरावट देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,43,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने राज्य के बोकारो, धनबाद, देवघर और गिरिडीह सहित 11 जिलों के लिए अगले 3 घंटों का नाउकास्ट अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश, बादल गर्जन और वज्रपात की आशंका है। प्रशासन ने लोगों और किसानों से खेतों और पेड़ों के नीचे न जाने की अपील की है। वैज्ञानिकों के अनुसार कल धनबाद, बोकारो और 10 सितंबर को रांची, हजारीबाग समेत कई जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
3: बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना था, जो पिछले सप्ताह में बहुत ज्यादा रेन दे करके वो झारखंड से पश्चिम की ओर चला गया था और फिलहाल उसकी स्थिति सेंट्रल यूपी पर स्थित है अभी भी, और वो अग्रसर धीरे धीरे हो रहा है, तो इसी के चलते ये बारिश हुई है और अगला 5 दिन भी झारखंड में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने वाली।
0: हॉकी, सिमडेगा में 2 दिनों के राजकीय शोक के बाद आज से 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले दोबारा शुरू हो गए हैं। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर 6 और 7 सितंबर के मैच स्थगित थे। हॉकी सिमडेगा के अनुसार आज पुरुष और महिला वर्ग के कुल 12 मैच खेले जाएंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। भर्ती गड़बड़ियों की सीबीआई जांच को लेकर भाजपा का 4 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन शुरू। रांची समेत कई जिलों में DCSP कार्यालयों का घेराव। धनबाद में भीषण भू धसान से कई घर जमींदोज, एक बच्चे की मौत और आधा दर्जन घायल। स्थानीय लोगों ने मुआवजा और पुनर्वास के लिए मुख्य सड़क की जाम। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी शुभकामनाएं, कहा साक्षरता ही सशक्त समाज और विकसित भारत की आधारशिला। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो सहित 11 जिलों के लिए जारी की तात्कालिक चेतावनी, अगले 3 घंटों में वज्रपात और बारिश की आशंका। और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन के बाद 2 दिनों का शोक समाप्त। सिमडेगा में 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले आज से दोबारा शुरू। और इसके साथ ही आकाश

0: वाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कुछ वक्त अपने लिए निकालकर अपने आप को ताजगी से भरपूर कैसे किया, कब किया, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भारत पढ़ते हुए अगर इससे जुड़ी कुछ अनुभव है आप हमें लिख भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत हसीना मान जाएगी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। अख्तर रोमानी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, वे तो होले से किसी तस्वीर में कैद होकर जीवन भर के लिए खूबसूरत याद बन जाते हैं। इंसान भी हवा के झोंके की तरह है, जो कभी जीवन में ना हुआ वो घटित हो जाता है। इसीलिए हर मुलाकात का सम्मान कीजिए। कौन जाने जिसे आप साधारण घटना समझ रहे हो, समय की सच्ची और खूबसूरत इबारत हो जिसे आप बार बार जीना चाहते हो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी कोई रिश्ता शब्दों से नहीं, बस एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान से शुरू हो जाता है। कुछ मुलाकातें तस्वीरों में नहीं, दिल में कैद हो जाती है, और फिर वही खामोश पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब बन जाते हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और एक नजर में दिल को अपना सा लगने लगता है। फिर उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल मन में एक मीठा सा ख्वाब सजा देते हैं। कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं, और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखी है गीतों की लिस्ट, जो वो कह रहे हैं कि ये शामिल हो सकते हैं गीत। उनमें से कुछ तो शामिल हो चुके हैं, कुछ अभी अभी शामिल हुआ है, अभी अभी जो शामिल हुआ है वो भी लिखा गया है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिस्ट लिख डाली है, लेकिन हमें इंतजार है आपके उन संदेशों का। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कौन सा वक्त है जो आप अपने आप को सुकून देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जाते हैं, ऐसे कौन से अनुभव है जो इस इबारत को पढ़ते हुए आपको याद आ रहे हैं, आप वो किससे हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस गीत की तरफ, देखते हैं ये गीत लिस्ट में है या नहीं। आपकी लिस्ट में

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरा पन्ना, फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारी एक श्रोता कहती हैं कि शुरू के जो दो गीत सुनवाए गए वो सुनकर एकदम आनंद आ गया है। एक श्रोता लिखती है कि ये जो गीत तस्वीर उतारता हूं अभी इन्होंने सुना, ये मेरे ख्याल से इन्होंने पहली बार सुना है, लेकिन कैसा लगा ये गीत ये जरूर लिखें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ये जो गीत है ये कुछ अलग है, तस्वीर उतारता हूँ इस तरह के लिरिक्स जो है उन्होंने सोचे नहीं, लेकिन बहुत ही अलग तरह के लिरिक्स हैं, फिर भी बहुत ही खूबसूरत गीत है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़कर जो साथी मित्र बन गए हैं, हम उन्हें जानते हैं या ना जानते हैं फिर भी परिवार के सदस्य की तरह महसूस होता है, जिनकी तस्वीर फेसबुक पेज के माध्यम से दिल में उतर गई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश इस गीत को मद्देनजर रखते हुए आपने लिखा है। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि इबारत पढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि मोहब्बत भी कैसी अनकही सरगम है, न शब्द चाहिए ना कोई इकरार, बस एक नजर काफी है, और शाम की हवा में लहराती चुनरिया और आंखों में उतरता कोई अनदेखा संसार, जीवन जैसे ठहर गया हो और उस ठहराव में ही सुकून है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत प्रेम के उस एहसास को समर्पित है जो इंसान के दिल को बेखुद कर देता है और जिंदगी को सपनों तथा उम्मीदों से भर देता है,

चरम बिंदु वो है जहाँ दो अलग अलग राहें बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से एक ही दिशा में बढ़ चलती है। जी हाँ बिल्कुल। साथ ही जब तस्वीर की बात चली है तो क्यों ना हम उन तस्वीरों की बात करें जो हमारे पुरानी एल्बम्स में भरी पड़ी है और उनके द्वारा हम पुरानी यादों तक पहुंच जाते हैं। तो आज जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी बात भी है, और डिजिटलाइज हो चुका है हर चीज़, एक क्लिक में न जाने कितनी सारी तस्वीरें ले लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन उस ज़माने में जहाँ एक रोल में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ तस्वीरें हम ले सकते थे, एक अंक होते थे कि इतनी ही तस्वीरें आप खींच सकते हैं, और फिर इतने दिनों तक उसका इंतज़ार करना पड़ता था उन तस्वीरों को घर तक लाने में, और कैसी तस्वीर आई है, किसकी अच्छी आई है, किसकी ठीक नहीं आई है, वो सब यादें आप मुझसे साझा कर सकते हैं। कि आपने वो सब तस्वीरें संभाल के रखी है, किस तरह से संभाल के रखी है, क्या उन पुरानी एल्बम तक फिर से कभी कभी बैठ कर जाते हैं, सुकून के पल बिताते हैं, देखते हैं क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज हमारे मोबाइल फोन की तस्वीरों में। लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगले गीत तक पहुंचते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, ये वादा रहा फिल्म का नाम था। गुलशन बावरा ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बस यही याद रखना चाहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखती है कि आज मैं विविध भारती के मोबाइल पेज के पहले की फीलिंग, जो सिर्फ हम रेडियो सुनते थे, वो आजमाना चाहूंगी और बस गाने सुनना चाहूंगी पहले की तरह। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि हमारे लिए वो पल बड़े ही अनमोल होते हैं जब हम चार दोस्त मिल बैठते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, और सच कहें तो कुछ समय से मानो हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं, क्योंकि हमारे घर काम भी चल रहा है और जिन फूलों को देखकर हम सुबह मुस्कुराते हैं वो सब हमने कुछ दिनों के लिए छत पर रख दिए हैं, लेकिन अब जरूर मुस्कुराएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जुबा खामोश है पर दिल में एक शोर सा है, तेरी तस्वीर का जादू ढलती शाम में कुछ और सा है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां। एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुंचा है कि तस्वीर उतारने के कई साधन हैं, एक आंखों से उतारी जाती है, दूसरी मोबाइल से उतारी जाती है या कैमरे में, और तीसरी पेंटिंग के जरिए कल्पना के द्वारा उतारी जाती है या बनाई जाती है। जी हाँ, तस्वीरों की तो बहुत से साधन हैं उतारने के, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर हम यादों में जो खो जाते हैं, क्या उन तस्वीरों को सहेज के रखते हैं? वक्त मिलता है वहां जाकर उन तस्वीरों को देखने का, और क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में, बताएं मुझे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरा ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। तस्वीरों की बात चली और बहुत से मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं धड़ाधड़ करके, और लिखते हैं कि जो बात तुझ में है वो तस्वीर में कहां। ये बात तो बिल्कुल सही। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत देर से फेसबुक पेज मिला नहीं, कहीं मिस हो गया था इसीलिए देर से मैसेज कर रहा हूं। कोई बात नहीं, आप जब पहुंच जाएं, जब मैसेज करें, हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अभी सिंगापुर में है और हर एक साल कहीं ना कहीं घूमने जाती हैं वो, और हर एक जगह से कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर आती हैं। साल भर उन यादों को संजोए हुए एक अच्छा समय बीतता है, और इस वक्त वो सिंगापुर में है। वहाँ इतने प्यारे बीच हैं और हरियाली है, जहाँ उनका मन बहुत आनंदित फील कर रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वक्त जरूर निकालना चाहिए कहीं निकलने के लिए। वो कहते हैं ना, ठहराव बहुत जरूरी है फिर से एक शुरुआत करने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में पुराने और नए दोनों ही गीत बज रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, दोनों ही सुनने को मिल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो पुरानी तस्वीरों वाले जो दिन थे वो बहुत बढ़िया थे। उन दिनों कैमरा एक अलग ही तरह का उपकरण हुआ करता था, और जिसमें रील होती थी, संभाल कर देख कर हम तस्वीर खींचते और यादें एक रील में कैद हो जाती। जब रील धुलकर आती, यादें रंगों में सजकर रूबरू होती, तो बड़ा मजा आता और एक तरह से जो यादें हैं उनका पुनर्जन्म होता। ये देखकर हंसते, चटकारे लेते, खिंचाई करते कि भाई किसकी तस्वीर किस तरह से आई है। वो जो पल थे वो कुछ अलग ही थे। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले तस्वीरें लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था, इसलिए उनमें सब्र और यादों की मिठास होती थी। आज एक क्लिक में तस्वीर सामने आ जाती है, मगर पुरानी तस्वीरों जैसा उस पल का इंतजार और ठहराव कहीं कहीं बहुत याद आता है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल महाशय जो है, इंटरनेट जो है, बहुत उन्हें परेशान कर रहा है, आंख में चोली खेल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ ही लिया है हमारे इस प्रोग्राम को, और इस वक्त वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरों की दुनिया में अगर प्रवेश किया जाए तो चाहे वो एल्बम हो या फोन, वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और हम आ चुके हैं इस प्रोग्राम के अंत तक आज के इस प्रोग्राम के समापन की ओर, तो हमें भी पता नहीं चला कि कैसे वक्त निकल गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के दौर में फिल्म या तस्वीर उतारने के लिए विशेष कर फोटोग्राफर को बुलाया जाता था, आजकल हर कोई फोटोग्राफर है, और पहले किसी विशेष अवसर पर खींची जाती थी तस्वीरें और उनकी अहमियत कुछ अलग होती थी। आजकल तो हर पल पल आप तस्वीर खींच सकते हैं और गूगल महाशय ने संभाल के रखा इन सबको। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पुराने कैमरे को उन्होंने शोकेस में सजाकर और सहेज कर रखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि डिजिटल फोटो से हमारे वो पुराने फोटो देखने में और उसमें खो जाना उन्हें बेहद

पसंद आता है। ये जरूर है कि डिजिटल फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरों को जूम नहीं कर सकते, लेकिन जो एहसास है वो तो कुछ अलग ही है। जी हाँ, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पहले कैमरे रसायनों, नेगेटिव और रीलों पर काम किया करते थे जिन्हें बनवाने में समय लगता था। आजकल के समय में स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों से तुरंत फोटो आ जाती है और तस्वीरों को एल्बम में सुरक्षित संभाल के रखा जाता था, आजकल फोन में सुरक्षित है और नेट पर भी उपलब्ध है। जी हाँ बिल्कुल, इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत इस प्रोग्राम का।

साथ ही ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाएंगे। ये गीत आप सागर फिल्म से सुन रहे थे इस वक्त किशोर कुमार की आवाज में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न करते हैं। आज आपने ये सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के साथ।

0: रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना कल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास

0: मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
2: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
3: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी

0: के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई, जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रेहेंड किया।
1: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना

0: देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। 9-2-11 फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम,

0: जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: किसी के।
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत काला पानी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वडोदरा में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जोर दिया जा रहा है ताकि माल ढुलाई में समय कम लगे और ईंधन की भी बचत हो। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि विकसित भारत की सप्तधारा के लिए गतिशक्ति भी अहम सेक्टर है जिस पर सरकार का ध्यान है।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गतिशक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो।
0: राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति का चरण जारी है। कल के स्थगन के बाद आज से फिर सुनवाई का काम सभी जिलों में शुरू हुआ है। राज्य में अब तक फॉर्म 8 के माध्यम से 2,38,153 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 3,75,000 फॉर्म 6 भी प्राप्त हुए हैं। फॉर्म 6 ए और फॉर्म 7 के माध्यम से भी कई आवेदन मिले हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि एसआईआर से जुड़े दावा आपत्ति और नए वोटर बनने के लिए 15 सितंबर तक आवेदन दिए जा सकते हैं। एसआईआर के तहत 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग का अंतराल 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के समय लगाई गई यह पाबंदी वर्तमान में आपूर्ति में सुधार के बाद हटाई गई है। अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 25 दिनों का एक समान नियम बुकिंग के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर कहा कि साक्षरता ही सशक्त समाज और विकसित भारत की आधारशिला है। मंत्री ने संकल्प व्यक्त करते हुए आह्वान किया कि शिक्षा का प्रकाश हर घर और बच्चे तक पहुँचे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर भाजपा ने आज से 4 दिवसीय राज्यव्यापी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव कार्यक्रम शुरू किया है। पहले दिन रांची समेत 5 जिलों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार को छात्रों के मुद्दे पर घेरा। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व किया। भाजपा की ओर से 2 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में इंसाफ मांगने वाले छात्रों को सरकार प्रताड़ित कर रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में एक जिला में 8, 9 और 10 को छात्रों के समर्थन में फर्जी मुकदमे को वापस करने के लिए और सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसलिए आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इसी प्रकार का प्रदर्शन का कार्यक्रम है।
0: भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर भाजपा के राज्यव्यापी आंदोलन पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और मीडिया कन्वीनर डॉ. एम. तौसफ ने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं के भविष्य पर केवल गंदी राजनीति कर रही है और उसका मकसद छात्रों को गुमराह करना है।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस बिल्कुल ठीक है ममता जी। अच्छा एक बात बताइए कि जब अखबार आप पढ़ती हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ती हैं अखबार में?
1: ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल है। कई बार हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी कोई ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल दुखद है या बहुत उस पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है तो फ्रंट पेज पढ़ते हैं। नहीं तो मेरी आदत है मैं सबसे पहले संपादकीय वाला पेज पढ़ती हूँ। और एक जमाना था सबसे पहले अंतिम पृष्ठ पढ़ा करते थे जब प्रतिदिन कॉलम आया करता था शरद जोशी का, तो सबसे पहले अखबार का वो पलट देते थे और पीछे से शुरुआत करते थे, फिर संपादकीय वाला पृष्ठ, फिर हम फ्रंट पेज पर जाते थे। लेकिन आजकल कई बार खबरें ऐसी देखने को मिलती है, लगता है कि हाँ एक निगाह फ्रंट पेज पर डाल लो, उसके बाद संपादकीय वाले पृष्ठ पर जाना इसलिए भी अच्छा लगता है कि उसमें एक तो कई आलेख होते हैं और वो पढ़कर हमारे पास शब्दकोश का भंडारण होता है और शब्दकोश मिलते हैं, भाषा मिलती है और एक कंटेंट भी मिल जाता है, विषय वस्तु मिल जाता है।
2: कई बार ममता जी ऐसा होता है कि सब लोग जब पेपर खोलते हैं तो वो यही करते हैं कि पहला पेज देखा, उसके बाद आखिरी में चले गए और फिर बीच में आ गए, तो जो उन्हें जो जिस चीज में रुचि है तो वो चीजें वो पहले पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हम गृहणियां हैं तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज क्या क्या उसमें कुछ अलग सी दिया गया है, व्यंजन दी गए या कहानी दी गई है, तो हम लोग उन चीजों को पढ़ना पहले पसंद करते हैं।
1: अपनी अपनी पसंद के अनुरूप लोग चुन लेते हैं कि कौन सा पृष्ठ पढ़ना है। और तीसरा पेज भी पढ़ना चाहिए। तीसरे पेज पर शहर की खबरें होती हैं और जब पढ़ाई के दिनों में विश्वविद्यालय की खबरें हुआ करती थी, तब तो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इंटरनेट का, सोशल मीडिया नहीं था, तो कई बार अचानक यूनिवर्सिटी बंद होती थी और तो फिर जाना ना पड़े तो वो खबर सबसे पहले देखते थे कि AU क्लोज्ड, याद होगा है ना?
2: आपने बिल्कुल तो, सही कहा आपने, क्योंकि जो जिस समय दौरान दौर में हम लोग थे तो उस दौरान के समय की जो खबरें हमारे लिए जरूरी होती थी वो हम पहले ही पढ़ना पसंद करते थे।
1: तो एक मिनट हाँ। इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ। वो ये कि ये बताएं कि हमने तो अपनी बात बता दी, हमारे श्रोता बताएं कि अखबार पलटते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं और स्कूल कॉलेज के दिनों में क्या पढ़ा करते थे। अगर कोई कॉलम याद है तो उस कॉलम का जिक्र करें, जैसे हमने अभी दो कॉलम का जिक्र किया प्रतिदिन, और यूनिवर्सिटी कॉलेज की खबर कि जब दिख जाता था जैसे बहुत बदली, कुहासा छाया हुआ, घनी बदली है, ठंड से हड्डियां कपकपा रही हैं, ऐसे में लगता था अरे बाप रे क्लासेस के लिए जाना है यूनिवर्सिटी और घर से बहुत दूर थी, तो पन्ना पलटते थे, AU क्लोज्ड जब आता था आहा आज तो नहीं जाना है, घर पे आराम से रजाई ओढ़ के बैठना है। तो ऐसी कोई बात याद आई है अभी बातों के दौरान तो जरूर लिखिए, बहुत संक्षेप में लिखे हमारे श्रोता, है ना?
2: और मुहावरों की दुनिया में घर घाट एक कर

0: यानी कि किसी भी विषय पर अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं से भी, किताबों से, अखबारों से, सब जगहों से लेना पसंद करते हैं।
1: अच्छा जरा बताइए,
0: तो
1: शिक्षा क्यों जरूरी है?
0: भाई अगर शिक्षा, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ ही क्या पाएंगे कुछ भी, हमें सब किताबें शून्य नजर आएंगी।
1: और
0: जी
1: किताबें कैसे पढ़ेंगी और करियर के लिए कैसे आगे
0: हाँ,
1: बढ़ेंगी?
0: पहले तो
1: और
0: किताबें नहीं पढ़ पाएंगे तो करियर की बात ही बहुत दूर है ना। तो ये बहुत जरूरी कि हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।
1: शिक्षा जरूरी है, क्यों जरूरी है? और साथ में अब
0: जी
1: आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, दे रहे हैं या नहीं, या बचा लिया है?
0: जी
1: खास तौर से बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा भी मुद्दा
0: बिल्कुल,
1: होता है घरों में, वो भी बताएं।
0: क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस भी है तो इस पर भी हम बात करेंगे। और सखी विशेष में सुरुचि वाघ जॉम्बे.com की संस्थापक CEO हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखिए, शिक्षा की बात चल रही थी ना, शिक्षा क्यों जरूरी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोग आपस में ही सिखाने लग जाते हैं बच्चों को कि बोलना शुरू करे वो जल्दी से जल्दी। तो उसको छोटी छोटी चीजें, अक्षर सिखाने लग जाते हैं, कभी ए बी सी डी, कभी का खा गा, या उसके सामने हम दो दो अक्षर के शब्द बोलने लग जाते हैं, कहते हैं कि बोलो बेटा, पापा, मम्मी, ऐसे सिखाते हैं ना। तो वो धीरे धीरे चल के जब बच्चा बोलने लग जाता है तो घर से सीख जाता है, और घर में ही कहते हैं कि पहली पाठशाला तो घर की ही होती है। फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे वाले स्कूल में जाए, प्ले ग्रुप वगैरह में, जहाँ पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ज्ञान को वो उस समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से उनको जो ज्ञान दिया जाए वो सीख सके।
1: और अभी एक तरीका और है, घर पे ही
0: जी
1: शिक्षा लेना, मतलब ऑनलाइन
0: जी
1: पढ़ाई करना, वो भी अपनी जगह पर। अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं है स्कूल जाने की तो वो भी ठीक है, लेकिन जो स्कूल जाकर बच्चे सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी आचार व्यवहार, बात
0: जी
1: करना और खेल कूद के साथ जो बातों बातों में सीख जाते हैं, वो घर पे बैठे नहीं सिखा पाते हैं
0: बिल्कुल
1: माता पिता अकेले। जो 30 बच्चों के साथ, 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बच्चे सीख पाते हैं, थोड़ी न थोड़ी सबसे कुछ न कुछ पाते हैं, उधार लेते
0: बिल्कुल
1: हैं, तो ये सारी बातें, स्कूल की शिक्षा बहुत जरूरी है। और दरअसल शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोर लेना भी नहीं होता है, परीक्षा पास कर लेना भी नहीं होता है, बल्कि जिंदगी को सही ढंग से सीखने की समझ भी शिक्षा से हमें मिलती है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए शिक्षा यानी पढ़ाई बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे तभी तो हम आगे करियर भी चुन सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र की ओर जाना है, जहाँ से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और उन सब के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप हर चीज की जानकारी बहुत अच्छे से ले सकेंगे, और बिना हिचकिचाहट आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब ज्ञान जब मिलता है ना, तो उसके अंदर से, अपने अंदर से जो क्या होता है, मन से जो डर निकल जाता है कि हमें लगता है हमें ये चीज पता चल गई, इस बारे में, इस विषय में ये जानकारी हमें मिल गई है, और हम लोगों की जो सोच का दायरा भी शिक्षा से बढ़ता है। और इसके साथ साथ ममता जी, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसमें भी हमारी बहुत मजबूती आती है।
1: बिल्कुल, और महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है। एक समय था कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर कैद रहती थीं और उन्हें शिक्षा से परे ही रखा जाता था
0: जी
1: कि ठीक है, इनका इन्हें क्या होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा कर एक शादी कर दी जाएगी, दूसरे घर जाकर वहां का कामकाज संभालेंगी। लेकिन अब दौर बदल चुका है, महिलाओं को भी, लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए। और वो जब आजीविका कमाने लायक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जैसे बहुत सारे काम हैं जो पुरुषों के क्षेत्र में ही रखा जाता है, जैसे
0: जी
1: बैंक का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, बाहर की जो दुनिया होती है
0: दुनिया होती
1: उसमें पुरुष ही कामयाब माने जाते हैं अमूमन, कि घर में लड़कियां नहीं करती हैं महिलाएं।
0: जी
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में हर काम महिलाओं को भी करना चाहिए बराबर बराबर,
0: बिल्कुल आपने
1: तो
0: बहुत सही
1: अगर
0: बात
1: वो
0: की
1: शिक्षित नहीं होंगी तो ये नहीं कर पाएंगे।
0: जी। और ये बहुत जरूरी भी है कि सबको समझना भी चाहिए कि घर की महिलाओं और बेटियों को इन सब चीजों की जानकारी जरूर दें।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परेशानी और मुसीबत के समय शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी बनती है। नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने, किसी भी वित्तीय संकट या हमारे साथ हुए आकस्मिक हादसे के बाद हमारी डिग्री, कौशल और शिक्षा ही हमें दोबारा खड़े होने का संबल देती है। शिक्षा ही हमारा वो अदृश्य कवच है जो हर तरह के संकट में हमें रास्ता दिखाती है और परिस्थितियों से लड़कर जीतने का हौसला भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीने का सही ढंग सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने फैसले लेने, खुद फैसले लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है।
1: अब सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है शिक्षा। हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षा जो हर व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास जगाती है, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ बेहतर जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है। शिक्षित होने पर अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ में सभ्य समाज के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को तौर तरीका सिखा सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ

0: पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ

दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है। तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना जी।

0: सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सुरुचि वाघ जॉम्बे.com की संस्थापक और सीईओ। ये एक सफल महिला उद्यमी है जिन्होंने 2010-2011 में मोहित गुंडेचा के साथ मिलकर जॉम्बे की सह स्थापना की। आखिर जॉम्बे क्या है ये हमें जानना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है, तो ये हम आपको बता दें कि ये पुणे स्थित एक प्रसिद्ध टैलेंट
1: दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है, तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना जी।

0: आकलन किया। इससे कंपनियों को सही प्रतिभा की पहचान करने और कर्मचारियों के विकास के लिए बेहतर निर्माण के लिए वो कदम उठाती थी।
1: जी, दिन रात की मेहनत उनकी रंग लाई और भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने जॉम्बे के आकलनों पर भरोसा करना शुरू किया। इसमें लाखों लोगों के करियर को सही दिशा मिली। एचआर टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन गया।
0: सुरुचि बाग की ये यात्रा महज एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की दास्ता भी है जो सिलिकॉन वैली के आराम को छोड़कर अपने देश में शून्य से शुरुआत की और भारतीय कॉरपोरेट जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने का हौसला भी रखती है। और उन्होंने खास पहचान बनाई।
1: जी, और हम लोग सुनते हैं एक गाना।

0: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं सखी सहेली की इस महफिल में और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां देख रही हूँ तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता भी बहुत पढ़ते हैं,
1: वो हल्की फुल्की बातों में उन्होंने लिखा है ना,
0: पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और हमारी एक सखी हैं जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती हैं, लिखती भी रहती हैं कुछ कुछ, उनकी एक टिप्पणी है मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती है हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं और अखबार हमें देश दुनिया की खबर से अपडेट रखता है, मगर अब आज का जो जमाना है वहां बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षरों की सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांधकर, कागज ही रखेंगे शब्दों को बांधकर। मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते थे, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से याद आ गया कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था, ये सारी मैगजीन, चंदन, चंपक, नंदन और चंदा मामा वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे तो देखते थे कि अभी कितना टाइम है, दौड़कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई होती थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो दो तीन अखबार और होते थे ले

0: के बंडल बना के रख लिया। अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती
1: बिल्कुल
0: थी।
1: आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी। और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है।
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी आ जाते
1: आते भी थे,
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे।
1: हाँ,
0: देखिए अंत में क्या, शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते थे।
1: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जो बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोलकर पढ़ लेते थे। और अगर फिल्म संबंधी हो तो पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था। और देश दुनिया की जो होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
0: और ये जो पढ़ने की बात है, इससे इनकी बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार लघु कथा लिखी होती थी या कोई अलग से चुटकुला या कोई
1: कार्टून
0: और
1: का भी रहता
0: था, तो वो भी हम लोग पढ़ डालते थे। और चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से को हम उठा उठाकर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें क्या लिखा था, और कुछ कुछ अटकलें लगा लेते थे कि ये होगा इसमें।
1: देखिए शिक्षा का यही फायदा हुआ ना, कहीं भी कुछ लिखा दिखा और पढ़ने लग गए।
0: साथ में पढ़ने का शौक, क्योंकि उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ माध्यम नहीं होता था, या फिर आप खेलिए, ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो कल माता था आज भी आता है,
1: कॉलम आया करता था,
0: यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना जरूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई। सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है तो आज भी हम करते हैं, अखबार का वो हिस्सा या तो कैंची से काट कर या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है।
1: और ममता जी के अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उस
0: वर्ग पहली होती
1: हाँ,
0: थी
1: हाँ वो भी, और रंग भरो वाला रहता था, तो उसको काट करके हम लोग याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते थे वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी चाहिए,
0: इसी तरह से कल्पनाशीलता का विस्तार होता है, नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताजा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय मिल जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए और कहानियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूं, विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है, और यही शौक मेरे लड़के और अब पोती को भी है। पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए, और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए दीजिए।

0: तो बच्चों के पास उनके उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए।
1: किताबों और अखबार से जानकारी आपकी बढ़ती है
0: जी।
1: और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सकें, आसमान के तारों की पहचान कर सकें या फिर देश दुनिया के बारे में जान सकें। बहुत कुछ किताबें देती हैं, तो किताबों से बच्चों को जोड़कर रखिए।

0: ममता जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर कभी कभी ज्यादा बिजी होती हूँ तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ हैं ज्ञान में वृद्धि, देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट, शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुनें। यहाँ पर ये कहना सचमुच बहुत जरूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी, यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में आने वाली पीढ़ी में तो जरूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब उनमें रुचि पैदा होगी।
0: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी की जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं तो उससे उस समय की उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी और इंग्लिश अखबार आता है तो हम सुबह से ही सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस में ऑफिस से आने के बाद भी

0: पढ़ता हूँ। धर्म पत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने की ज्यादा आदत है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है। तो वो चीज मुझे मतलब लगती है, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ ले सबसे पहले। तो
1: और पहले ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नजर डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा। और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ ले, वो जो खुशबू होती थी पन्नों की खुशबू, वो आकृष्ट किया करती थी।
0: मैं कहने वाली थी। और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया, फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया, तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा
1: चुका है। और पुराने अखबार का प्रयोग भी बड़ा अच्छा किया जाता था, पुराने अखबार निकाल कर किताबों पर कवर चढ़ाना। जो स्कूल की किताबें होती थी, स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो संभालने की प्रवृत्ति है अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में, ये हम सबको सिखाने की जरूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज से अपडेट रहना शौक था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूं और बाकायदा 1-2-3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूं, लिखती है, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट न जाए, और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वहीं रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से ये स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करते थे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है। कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
0: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बाद ही में टाइम मिलता है, महिला जी, ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में ही लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़े और अपनी आदत जरूर बनाए अखबार।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, ये सभी बातें याद ताजा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत, हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। और एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे, तब हमारे यहाँ नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे। उस समय इंदौर में पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ रहता था। सबसे पहले देखते थे राशिफल, फिर न्यूज, अब भास्कर में अखबार में सबसे पहले फ्रंट पेज की मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ, फिर आराम से मैनेजमेंट, फंडा वगैरह वगैरह।
0: बिल्कुल सही बात,
1: राशिफल भी हम देखा करते थे।
0: बिल्कुल,
1: वो रोजाना वाला राशिफल,
0: रोजाना वाला,
1: आज क्या होने वाला है।
0: जी जी।
1: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ होगा,
0: शुभ होगा। और साथ में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे, जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधु का है, तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी। नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि इसमें क्या चल क्या रहा है, आजकल क्या डिमांड है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
1: तो अब पढ़ने की बातें तो अंतहीन है, बस यही यहाँ पर इस मंच से यही करते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए। फिलहाल ये गाना सुनिए।

0: हे राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और यही कि जैसे कि अब हम एग्जाम देना तो उसके पहले हम कितनी तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि हर प्रश्न हम याद कर लें, जो अगर आए तो हम उसका हल लिख सके, उत्तर लिख सके। तो घर का घाट एक करना यानी कि एकदम कठिन परिश्रम कर ही डालना जिसे कहते हैं। और हमारे साथी और लिखते हैं कि मेहनत और परिश्रम करना लक्ष्य पाने को पाने के लिए दिन रात एक कर देना, ये मुहावरा हमारी जिंदगी में बहुत बार काम आता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परीक्षा पास होने के लिए घर एक एक कर देना, घर का घाट कर देना।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक जवान देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
1: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ करना, हर जगह प्रयास करना या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया, अंतर क्या है, कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं, घर घाट एक करना कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी पाने के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया,
0: मतलब जी तोड़ कोशिश करना। और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अच्छी बात है। सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की जाती है। और एक आपकी भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जब खासतौर से कुछ आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल ये बात, बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई हैं, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1990 छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान विभिन्न संकायों की 53 मेधावी छात्राओं को स्वर्ण पदक, चांसलर मेडल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्राओं को शुभकामना देते हुए शिक्षा तथा प्रतिभा का उपयोग समाज और देश के विकास में करने का आह्वान किया। छात्रों के मुद्दे पर भाजपा ने आज से 4 दिवसीय राज्यव्यापी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव कार्यक्रम शुरू किया है। पहले दिन रांची समेत 5 जिलों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार को छात्रों के मुद्दे पर घेरा। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व किया। भाजपा की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई से जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। गिरिडीह पुलिस प्रशासन और सरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध मार्च निकाला और प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने और प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। धनबाद जिले के नावाडीह में संचालित एक निजी अस्पताल में काम करने के दौरान पिछले 3 सितंबर को बिजली की तार की चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल मजदूर का बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मजदूर के परिजनों ने आज मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। सरायकेला खरसावां जिले में आज हुई 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। सरायकेला में जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं खरसावां में बिजली की तार की चपेट में आने से एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे
2: नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
3: जी।
2: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूँ, और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूँ। इट्स एन ऑनर।
3: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको

0: हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
1: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम लोग
0: जी
1: छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, टीचर टीचर नहीं खेला
0: जी
1: होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं, बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। मुझे लगता है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया, और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था। तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस।
0: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी, लेकिन जब ये तय किया होगा कि अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
1: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा। और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की नकल उतारा करता था अपने रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए, और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को, उनकी नकल उतार के, जो एक्टर्स थे हमारे उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था। और जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप इसकी इसकी इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज निकाल के दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था। तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया। और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको, दूरदर्शन कशीर, उस पे मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज, जो कभी 7 एपिसोड कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पे काम करता गया। तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
0: जी, तो एक बेस बन गया आपका वहाँ काम करते करते। जी, तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो मुंबई का जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं, कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी, किस तरह से आप, क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
1: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है, मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम दूसरे, हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए, हम बिल्कुल बेघर हो गए थे उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया कि मुंबई इसलिए आऊंगा कि नौकरी भी करूंगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा। और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा। और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो होती है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं।
0: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित की अगर हम बात करें?
1: मुल्क था और वो पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत, ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया, मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे।
0: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला दें?
1: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से।
0: जीना या मरना या
1: जी हाँ।
0: चलिए।

0: तो विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलोसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से। लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बंध जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए, कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी जो उसमें बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है
0: जी।
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय मैं ये दोनों शोज कर रहा था, ये कुछ 2-2.5 साल तक चलता रहा
0: जी।
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइपकास्ट कर दिया जाता है एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहां से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे तो कभी भी फिर तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा
0: जी।
1: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं तो, या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटेरली डिसीजन

0: था और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो।
1: जी।
0: लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
1: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
0: देखिए मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है, अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है।
1: जी,
0: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज कर रहा होता
1: जी,
0: तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना, और आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी।
1: जी, वो स्वीकार करना बहुत जरूरी है।
0: सिर्फ उनकी वजह से मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान
1: जी,
0: मैं मानता हूँ यूनिवर्स, और मेरे ऑडियंस है, मेरे फैंस हैं जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
1: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको, और स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी बात है।
0: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
1: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
0: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है, लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान देके प्रकृति पे ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा।
1: जी, तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्रीराम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं

0: मैं उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था,
1: जी
0: और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है जिंदगी में, कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीजों को, आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
1: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैं चाहता हूं कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
1: आनंद फिल्म से
0: बिल्कुल
1: जी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो विनीत ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब बस आते हैं कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट होती हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पर आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहां जो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है
1: जी,
2: जब सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पे आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से जरूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त आपके तुनीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए

0: खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
1: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
0: मेरा जो
1: कितने घंटों का
0: पॉपुलर शो था माए का, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
1: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें ब्लास्ट के थ्रू इनका,
0: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे। हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था, और मैंने लगातार, मैंने बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए, कम से कम 56 से 60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर। और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूँ। तो ये
1: और तब तक बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आ गए,
0: फिर ये 2 दिन में सोया, उसके बाद वापस से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
1: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है।
0: सारी यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ। सो बहुत ड्रेनिंग था, लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
1: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का, हम सुन ले सब।
0: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
1: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
0: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है अपना, अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसे ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को, क्योंकि कई बार आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस।
1: ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, और यही चीज है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौट कर चले जाते हैं। क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है, और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना जरूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं जहां पर आपका दिमाग भटक सकता है। लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से भरा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है, वो लोगों को नहीं दिखता। जब वो पा चुका होता है, और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो मुझे लगता है जितने भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए जितना भी पैसा वो कमाते हैं, वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे क्लब्स में जाते हुए या पार्टीज में जाते हुए उस पे ना जाएं शुरू में। करें, लेकिन ये चीजें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए, सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं, उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। सो ये बहुत जरूरी चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
0: जी, और जैसे कि आप इन दिनों टीवी, फिल्म, ओटीटी, वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो AI आ रहा है, AI की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
1: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा AI से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद LPG आ गया, और उसके बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया, और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया। तो ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू करते हैं। सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा। जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है। यही प्रकृति का नियम है। तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं, वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है उसे, वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है, कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं
0: जी।
1: कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानियों को बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है, कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके, उनको एंटरटेन तो करना जरूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे, कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार मुझे लगता है फैलेगा।
0: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं
1: जी हाँ।
0: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सबका क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
1: बहुत ज्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की, और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहां भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं, वहां हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में
0: जी,
1: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूं मैं जब भी मैं वहां जाता हूं। और खासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज हुई, उसकी निर्माता निकोलेट एंडिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टारकास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें
0: जी।
1: ये एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28th ऑफ अगस्त को वो यूके में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि यहाँ आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहां ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहां की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहां पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारी इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म, और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है, क्योंकि मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का, जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए। और वो लोग बहुत खुश थे। मजे की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे
0: जी,
1: वहां पर यहाँ की एक चैनल वहां पर टेलीकास्ट होती है जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहां पर टेलीकास्ट होता है, और जब मैं वहां गया, और वो इतना पॉपुलर शो है वहां कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है
0: जी,
1: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
0: वहां कैसे
1: इंडियन एक्टर वहां कैसे हूं, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे, ये मतलब यहाँ के लोकल लोग तुम्हें पहचान रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
0: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं कई बार, और भी करते होंगे कुछ ना कुछ, आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ, किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
1: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल

0: पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया, एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक इशारा किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा, मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं मतलब बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली
1: जी।
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, और कोई खड़ा है कोई कुछ है। तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ।
1: जी।
0: सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है। जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए, और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं, एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो।
1: जी,
0: he was the part of the show, he was playing my dad in that show, in that pilot. When I saw him, mere liye wo matlab mera ek mera freeze ho gaya tha ki jinko main itna manta hu aaj main unke samne khada hu. और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे और मैंने कहा काका मतलब मेरे लिए ये एक मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा, एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर।
1: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
1: तो वही सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे,
1: बावर्ची
0: बावर्ची
1: बावर्ची
0: तो
1: एनी
0: बस
1: डे, मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूं और
0: हाँ
1: मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूं।

0: लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट. तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस तरह से काम किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था. एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे. वो लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी, वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना.
1: हाँ, बार बार देखी जाती थी बागबान से पहले. हाँ,
0: बागबान से पहले अगर कोई फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है.
1: जी, और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं.
0: बिल्कुल,
1: कुछ भी कर सकते हैं ऐसा लगता है. वो
0: उनका स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा, यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वॉज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग स्टार.
1: जी, उनका एक अलग ही चार्म था. नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें वो आते हैं कुछ और बन के आते हैं, फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं.
0: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था.
1: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं, उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है,
0: ये
1: क्या क्या किया जाता है.
0: सब असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं.
1: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आप का अपना निजी जीवन है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है. तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है, क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हों उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहाँ कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं.
0: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए.
1: जी.
0: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत राणा जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए, तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत राणा है.
1: जी.
0: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूं.
1: जी.
0: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं हमेशा. तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूं वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है. वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत राणा है. वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है, वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है, तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है. उसका विनीत राणा से कोई लेना देना नहीं है.
1: जी.
0: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो विनीत राणा है जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है. ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं. मुझे लगता है अगर वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है.
1: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं. शायद इतने साल से काम करते करते आपको
0: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती. कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं. मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था. तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमीडिएटली फोन निकाला तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे. तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है.
1: अच्छा.
0: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था. तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहां पर मैं सब भूल गया, और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए
1: जी,
0: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम खत्म किया, सीन पूरा खत्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम खत्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो ऐसे ओकेजन्स लाइफ में हो तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए, और ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस मेंटेन करना आसान रहता है।
1: और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
0: जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए, क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा।
1: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो एक मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है
0: जी।
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था।
0: जी
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी। तो मैंने उनको देखता रहता था। तो उनका नाम चांदनी था,
0: जी
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहां ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे, तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन की उन यादों तक जाता है गाना।
1: जी हाँ।
0: तो आपको, आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है, लेकिन स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन एक्टर उसके साथ बहुत ज्यादा चेंजेस ना करूं, अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूं, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूं

0: जब तक कि मैं वही ना बन जाऊं जो ये लाइंस बोल रहा है,
1: जी
0: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो
1: जी
0: शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था,
1: जी
0: और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे। जब तक मैं उनको फील ना करूं कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो
1: जी
0: याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूँ, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी
0: जी
1: हैं, तो
0: हाँ,
1: अगर आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
0: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का मुझे लगता है सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे।
1: जी
0: उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने,
1: जी
0: उन्होंने ही यू नो डिस्को और इस तरह के गाने, एक आरडी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी,
1: जी
0: इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज किया और मैं गया,
1: जी
0: मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है, और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं, लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन
1: चैन
0: कहाँ
1: का
0: रे
1: रहे
0: उसको 100% रिमिक्स करना चाहूँगा।
1: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हम।
0: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया हम अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूं, तो जिंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और

0: उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मज़ा आया और दोबारा आना चाहूँगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर स्थित प्रेजिशन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड जाकर वहां की कार्यप्रणाली और तकनीकी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के क्षेत्र में ऐसी इकाइयां राज्य की औद्योगिक क्षमता को और मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुआ गोलीकांड के शहीदों समेत झारखंड आंदोलन के सभी वीरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड की धरती हमेशा से जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की धरती रही है। श्री सोरेन ने कहा कि वीरों का सपना है, उनके संघर्ष की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। छात्रों के मुद्दे पर भाजपा ने आज से 4 दिवसीय राज्यव्यापी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव कार्यक्रम शुरू किया। पहले दिन रांची और पूर्वी सिंहभूम समेत 5 जिलों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार को छात्रों के मुद्दे पर घेरा। जमशेदपुर में प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई से जांच की मांग की। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने आज ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, प्रवेश तथा निकासी पंजी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। गांजा तस्करी के मामले में कोडरमा में अदालत ने 2 अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। अश्क गिरा करते थे तन्हाई में, ये तमाशा सरे बाजार भी हो सकता है। मुझ पे ताना ना कसो, मुझको ना पागल समझो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार हो सकता है। उसकी चौखट पे जाना, जरा थाम के दिल अपना, वहाँ इकरार भी इनकार भी हो सकता है।

दिल का खोना बहुत ज़रूरी है, इश्क होना बहुत ज़रूरी है, इतना आसान नहीं है उनको पा लेना। पहले दिल का खोना बहुत ज़रूरी है, जिसके सीने में दर्द ठहरा हो उसका रोना बहुत ज़रूरी है। उनसे होती हैं ख्वाब में मुलाकातें, मेरा सोना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यादों से घर नहीं बनता, जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है।

सुबह लिखूं या शाम लिखूं, हर खुशी को तेरे नाम लिखूं, तेरा जिक्र लिखूं, फिर तेरी फिक्र और हर दुआ में तेरा नाम लिखूं, ख्वाब लिखूं या ताबीर लिखूं, तेरे इश्क को अपनी तकदीर लिखूं, लिखकर खुद को हीर तेरी, तुझको अपना राजा लिखूं, फिर सोचा तुझे याद करना छोड़ दूं, सोचा तेरा इंतजार करना छोड़ दूं, दिल को समझाया बहुत, भूल जा उसे, दिल ने मेरे मुझसे कहा क्या चाहती हो, मैं धड़कना छोड़

इतनी मिलती है मेरे गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुझे देखने को ये दिल तरसता है, एक तेरे ही इंतजार में ये तड़पता है। कैसे समझाऊं इस दिले नादा को जो मेरा होकर भी तेरे लिए धड़कता है, कि मेरी सुबह का पहला ख्याल हो तुम, मेरे हर सवाल का जवाब।

चांद हो तुम मेरी हर रात का, मेरी जिंदगी का हंसी ख्वाब हो तुम। मुझको कुछ इस तरह याद हो तुम जैसे मोहब्बत की कोई किताब हो तुम। बर्बाद है हम तेरी

तुम यूं ही ना मिला करो हमें, मंजिल की राह में हम रास्ते भूल जाते हैं तुम्हारी आंखों को देखकर। तुम मेरी दुआओं का वो हिस्सा हो जिसे मांगते वक्त लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरा सुकून, तुम्हें खोना खुद को खोना, तुम्हारा होना मेरी जिंदगी, तुम्हारी खामोशी मेरी सजा, तुम्हारी आवाज मेरी जरूरत, तुम्हारी मोहब्बत मेरी राहत, तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी। तुम्हें चाहने में हमने हद की भी हद कर दी, वरना यूं ही कोई दिलो दिमाग पर हुकूमत नहीं करता।

आंखों को समंदर कहूं तो कम है, तेरी बातों को सुकून कहूं तो कम है, तेरी मुस्कुराहट को गुलाब कहूं तो कम है, तुझे क्या कहूं दुनिया जहां कहूं तो भी कम है, कि रूह की प्यास बुझा दी है तेरी गुर्बत ने, तू कोई झील है, झरना है, घटा है, क्या है, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, क्या है, शिद्दत और भी शदीद होती जा रही है, आपसे मोहब्बत और भी मजीद होती जा रही है, दिल तो था ही आपका दीवाना जाने जा, अब तो रूह भी आपकी दीवानी होती जा रही है।

मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

0: नए भारत का एक ही नारा, श्रमवीर है देश का सहारा। इस पंक्ति के साथ साथियों, कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी मेहनतकश साथियों का स्वागत है। आज आपके साथ गुफ्तगु करने के लिए उपस्थित है आकांक्षा और
1: युगेश्वर। स्वीकार कीजिए हमारा स्नेह भरा
0: नमस्कार।
1: आकांक्षा, मेहनत

0: ये माइक है।
1: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 5:35 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। किसान वाणी का समय होगा 6:02 पर। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी आप सुन सकेंगे 6:30 से। 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक 7:00 आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग आप सुन सकेंगे 7:15।

खुला आकाश का समय होगा शाम 7:45 से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8:00। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश गान हम सुन सकेंगे रात्रि 8:30 से। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। न्यूज़ @9 रात्रि 9:00। उर्दू में खबरें रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। रात्रि 10 आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 11 आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल पढ़ना लिखना सीखने तक सीमित नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है, यानी कि साक्षर होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, साक्षरता का सामान्य अर्थ है पढ़ने लिखना और समझने की क्षमता, लेकिन आज के समय में साक्षर होने का अर्थ है इससे कई व्यापक। एक साक्षर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, सही और गलत के बीच अंतर कर सकता है और अपने जीवन में से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले सकता है। दोस्तों, अगर हम युवाओं की बात करें तो साक्षरता उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। आज की युवा शिक्षित और जागरूक होगा तो आने वाला समाज भी मजबूत और प्रगतिशील होगा। दोस्तों, साक्षरता हमें आत्मनिर्भर बनाती है, लेकिन कैसे, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता, वह बैंक का फॉर्म नहीं भर सकता, किसी दस्तावेज को समझ नहीं सकता, दवा के पैकेट पर लिखे निर्देश नहीं पढ़ सकता या किसी सरकारी योजना की जानकारी स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में से हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता। इसके विपरीत साक्षर व्यक्ति अपने काम स्वयं करने की क्षमता रखता है और उसमें आत्मविश्वास भी अधिक होता है। आज के डिजिटल युग में केवल सामान्य साक्षरता ही पर्याप्त नहीं बल्कि डिजिटल साक्षरता भी ज़रूरी है। मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। युवाओं को यह समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए और सोशल मीडिया पर मिलने वाली जानकारी पर आंख बंद कर विश्वास न किया जाए। दोस्तों, साक्षरता हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी बनाती है। एक युवा को यह पता होना चाहिए कि उसे शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता और सम्मान जैसे अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही उसे अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। जब युवा अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों समझते हैं तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, साक्षरता का संबंध केवल नौकरी पाने तक से ही नहीं, यह हमारे सोचने और समझने की क्षमता को भी विकसित करती है। पढ़ने की आदत हमें नए विचारों से परिचित कराती है। किताबें, समाचार पत्र, विश्वसनीय जानकारी अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की मदद भी करता है। दोस्तों, आज युवाओं के सामने सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं। इसमें से कुछ सही होती है और कुछ गलत। एक जागरूक और साक्षर युवा किसी भी जानकारी को तुरंत सच नहीं मानता बल्कि उसके स्रोत को जांचता है, तथ्यों को समझने की कोशिश करता है और यही सोच एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान भी होती है। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि साक्षरता केवल अपनी ज़िंदगी बदलने का माध्यम नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को बदलने का माध्यम है। जब परिवार एक व्यक्ति पढ़ा लिखा और जागरूक होता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सकता है। विशेष रूप से युवाओं को चाहिए कि अपने परिवार और समाज में उन लोगों की मदद करें जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। एक युवा अगर खुद साक्षर हो तो किसी दूसरे व्यक्ति को फॉर्म भरना, अपना नाम लिखना, ज़रूरी जानकारी पढ़ना सिखा सकता है, तो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि साक्षरता केवल अक्षरों को पहचानने का नाम नहीं, साक्षरता अपने जीवन को समझने का सही निर्णय लेने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की शक्ति है। दोस्तों, युवाओं को केवल डिग्री प्राप्त करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि उन्हें ज्ञान, जागरूकता, तर्कशील सोच और डिजिटल समझ भी विकसित करनी चाहिए, क्योंकि जब युवा साक्षर और जागरूक होंगे तभी परिवार मजबूत होगा, समाज प्रगतिशील होगा और देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे साक्षर होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा

0: दोस्तों, इस गाने के बाद आइए सुनाते हैं आपको वार्ता। विषय है शिक्षा से खुलती नहीं राहें। वार्ताकार हैं मोहम्मद सैद।
1: मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य के विकास की सभी राहें खुल जाती हैं। शिक्षा प्राप्त करने के कई माध्यम होते हैं। यह विद्या अध्ययन करने एवं सुन के अथवा देखकर भी शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। जिस शिक्षा के लिए हम विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में जाते हैं, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा से हमें उपाधि और प्रमाण पत्र मिलते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा के बिना भी कई लोग शिक्षा के शीर्ष को प्राप्त कर चुके हैं। जो भी हो, शिक्षा हमें अधिक अनुशासित, विनम्र, तार्किक एवं कुशाग्र बनाता है। वैसे तो शिक्षा प्राप्त करने की उम्र सीमा तय नहीं होती, यह एक सतत प्रक्रिया है और न ही शिक्षा के मामले में कोई पूर्ण होता है। यह असीमित भंडार है। जो व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित और ज्ञानवान होगा, ज्ञान की प्रति उनकी तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। शिक्षा हमारे सोच, हमारे कर्म एवं आचरण में परिवर्तन ला देती है। सामान्य तौर पर जितने भी प्रतिभावान और महान विभूति हुए हैं, उनका एकमात्र संबल शिक्षा ही था। शिक्षा ने उन्हें महान एवं लोकप्रिय व्यक्तित्व प्रदान किया। शिक्षा के बगैर मानव एवं अन्य पशुओं में बहुत कम ही अंतर होता है, और यह शिक्षा ही है जो मनुष्य को श्रेष्ठतम सामाजिक प्राणी बनाया। यह हमारे ज्ञान के चक्षु को खोलता है, जिसके माध्यम से ही हम यह तय कर पाते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित। व्यवसायिक समाज में भी हम देखते हैं कि आज संपन्न वही है जिसके पास शिक्षा है। धन संपन्नता का आज आधार नहीं है। समाज में चिकित्सक, वकील, अभियंता, प्रशासक, शिक्षक आदि को श्रेष्ठ माना जाता है, और इसका एकमात्र कारण है उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण। काश उनके पास शिक्षा नहीं होती तो एक सामान्य अनपढ़ और इनमें कोई फर्क नहीं होता। शिक्षा हमें अधिक निपुण, कुशल और प्रवीण बनाता है, हमारे कार्य क्षमता और कार्य शैली का विकास करता है, और वहीं हमारे आय का निर्धारक होता है, अर्थात मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख साधन शिक्षा होता है। यही कारण है कि चाहे वो सरकारें हों अथवा समाज के माता पिता, सभी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, जिसके कारण आज मानव समाज के लिए प्रमुख आवश्यकता बन गई है। हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हमारे जीवन, हमारे आचरण के अनुरूप ही होता है। हमारे जीवन तत्व, हमारी शिक्षा, कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। यहाँ पर अन्न का अर्थ भोजन है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का होता है। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि आजकल मानव समाज में जो तरह तरह के छोटे बड़े दोष दिखलाई पड़ रहे हैं, उनका मूल हमारी शिक्षा ही है। आजकल हर जगह शिक्षा प्रसार की नई नई योजनाएं बन रही हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही देश से निरक्षरता को मिटा देगी, परंतु विचार यह करना है कि हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और वह किस प्रकार के जीवन का निर्माण कर रही है, तथा हमारी शिक्षा वास्तव में कैसी होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में जितना महत्व भोजन, कपड़े, हवा और पानी का है, उससे कहीं अधिक महत्व शिक्षा का है। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य की ज्ञान का प्रसार होता है। इंसान की बुद्धि का विकास शिक्षा अर्जित करने से ही होता है। शिक्षा मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। शिक्षा जीवन पर्यत्न चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ अनंत क्रिया करते हुए अनेक अनुभव प्राप्त करता है। इस अनुभव से जो ज्ञान उसे प्राप्त होता है, वही व्यापक अर्थ में शिक्षा है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म काल तथा प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का विकास करती है। वेदों में शिक्षा को एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम शिक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। जहां आज हमारे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा दे पाना उतना कठिन था, जो आज सरल हो पाया है। उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया तो शिक्षा का महत्व को समझा और बाकी को शिक्षित करने का निर्णय किया। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारे प्रकृति में कितने सारे रहस्य हैं जिन्हें आज हम समझ पाए हैं, जान पाए हैं। इसका श्रेय शिक्षा और शिक्षक को ही जाता है। शिक्षा किसी भी जाति, धर्म या लिंग पर आधारित नहीं है। शिक्षा सभी स्त्री पुरुष जाति को समान अवसर देती है।
0: दोस्तों, भी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था शिक्षा से खुलती नहीं राहें। वार्ताकार थे मोहम्मद सैद। दोस्तों, इस वार्ता के बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं काग चेष्टा और बको ध्यान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन और युवा अवस्था हमारे जीवन का वह समय है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस समय हमारे सामने बहुत सारे सपने होते हैं, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी पाना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना। लेकिन केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यही सीख हमें काग चेष्टा और बको ध्यान से मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काग चेष्टा की। कौवा अपनी मेहनत और लगातार प्रयास के लिए जाना जाता है। वह किसी काम को आसानी से छोड़ता नहीं है। युवाओं के लिए संदेश है कि असफलता मिलने पर अपने प्रयास बंद नहीं करना चाहिए। कई बार विद्यार्थी एक दो बार परीक्षा में असफल होने के बाद निराश हो जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते तो वह मान लेते हैं कि वह कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन असफलता हमारी क्षमता का अंतिम प्रमाण नहीं है। असफलता हमें अपनी कमियों को पहचानने और अगली बार बेहतर तैयारी करने का अवसर देती है। दोस्तों, अब बको ध्यान क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बगुला जब अपनी पानी के किनारे शिकार की प्रतीक्षा करता है तो देखता है कि वह बहुत शांत और एकाग्र दिखाई देता है। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है और सही अवसर आने का प्रयास करता है। आज के युवाओं के लिए सीख बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स और तरह तरह के मनोरंजन के साधन हैं। ये चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हमारा ध्यान भटका सकता है। अगर हम पढ़ाई करने बैठे तो कुछ मिनट में मोबाइल देखने लगते हैं तो हमारा ध्यान लक्ष्य पर कैसे रहेगा। इसलिए युवाओं को यह सीखना चाहिए कि जिस समय काम कर रहे हैं उस समय उस पर अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगाएं। यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य पर ध्यान दें। यदि कोई कौशल सीख रहे हैं तो उस पर पूरी लगन से सीखें। दोस्तों, हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। अगर रास्ते में रुकावट आ जाए तो रास्ता बदल सकता है, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे काग चेष्टा और बको ध्यान के बारे में कि हम अपने जीवन में उसे किस तरह बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है तो आइए

दोस्तों, इसी गाने के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। आपकी दोस्त आराध्या माही को स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज सरायकेला खरसावा में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नवस्थापित कैथ लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने से रोगों के उपचार के लिए लोगों को राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें अपने राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुआ गोलीकांड के शहीदों समेत झारखंड आंदोलन के सभी वीरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड की धरती हमेशा से जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की धरती रही है। श्री सोरेन ने कहा कि वीरों का सपना और उनके संघर्ष की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। छात्रों के मुद्दे पर भाजपा ने आज से 4 दिवसीय राज्यव्यापी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव का कार्यक्रम शुरू किया। पहले दिन रांची और हजारीबाग समेत 5 जिलों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार को छात्रों के मुद्दे पर घेरा। हजारीबाग में प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की CBI से जांच की मांग की। पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी पर FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर थाना के प्रवेश द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठ गए हैं। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को आज गिरिडीह समाहरणालय सभागार में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक विमल कुमार समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सेवा दे रहे पारामेडिकल छात्रों ने बकाए मानदेय की भुगतान की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि अस्पताल के अलग अलग विभागों में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन उनके मानदेय नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: किसान वाणी।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
2: विष्णुकर जोहार।
1: ई कार्यक्रम का प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: और कहो का हाल चाल है?
6: एकदम नगदे है पौराणिक भाई। रावड़ेकर कहो का हाल समाचार है?
5: हमारो हाल चाल बढ़िया है और आसरा करे लेके सुनोया हमार किसान भाई बहन मन कर भी हाल चाल बढ़िया हुई।
6: अच्छा पौराणिक भाई, अब तो गांव घर में ट्रैक्टर मन आए गलक है तो किसान मन गरु काड़ा मन के नी पोसाए ना।
5: मकेल खेती कर साथे साथे अगर पशु मन के पोसा थी तो बहुते फायदा है।
6: हाँ एकदम, काले की देखो गाय के पोसब तो दूध बछड़ा गोबर और उकर मूत्र से भी औषधि बना सकीला।
5: हाँ, और जैसे ही छगरी होलक, गरु होलक, सुअर होलक, मुर्गी अगर पोसा थी तो खेती बाड़ी कर साथे साथे अतिरिक्त मुनाफा भी भेटा थे।
6: एकदम, अब गाय गरु काड़ा छगरी मन पोसे से बहुते फायदा होला।
5: अब फायदा हुए कि जैसे हमरे गोबर का प्रयोग करील, गोबर से खाद बनेला और खाद के तो खेत में डालबे करील, लेकिन वो गोबर कर खाद के बेच भी सकीला।
6: एकदम नगद
5: तो होलक ने अतिरिक्त फायदा।
6: तो मिला जुला के कहब कि खेती बाड़ी कर साथे साथे पशु मन के भी पोसे बहुते फायदा है किसान मन ले।
5: सही बात कहली, खेती बाड़ी कर संगे संगे अतिरिक्त आमदनी अगर करेक है तो किसान भाई बहन मने रौरिन पशुधन के भी अपनाओ, ये सब के पशु और अतिरिक्त आमदनी करो। तो आज हमरे ये कार्यक्रम में काका जानकारी करब सके बताए दो थे। आज की बात में हमरे जानकारी करब झारखंड कर विभिन्न जिला में जलवायु परिवर्तन और जलवायु सहिष्णु कृषि ये का है, एक बारे में जानकारी देवें डॉक्टर प्रज्ञा कुमारी। एगो नागपुरी में गीत सुनब सरिता देवी और संगी मनकर गावल। और नई उम्र की नई फसल में एगो सब्जी उत्पादक किसान राजीव उराव से और इनके भेंट भी करवाओ।
6: तो चलो आज कर बात में हमरे मन सबसे पहले सुनीला झारखंड के विभिन्न जिलों में जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु सहिष्णु कृषि कर बारे में, और इके बताते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा कुमारी और इनके से गोठियाए हैं हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
5: किसान साथियों नमस्कार। जलवायु परिवर्तन और कृषि का सीधा और गहरा संबंध है, क्योंकि तापमान में वृद्धि और अनियमित वर्षा से फसल उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। तो किसान साथियों आज इसी विषय पर चर्चा होगी कि झारखंड के विभिन्न जिलों में जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु सहिष्णु कृषि क्या है, और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा कुमारी, सह प्राध्यापक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर प्रज्ञा आपको नमस्कार है।
7: नमस्कार।
5: आप हमारे किसान भाइयों, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जलवायु परिवर्तन से हमारा क्या तात्पर्य है और इसका असर झारखंड में किस प्रकार दिखाई दे रहा है।
7: जलवायु परिवर्तन का अर्थ है लंबे समय में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम तत्वों के सामान्य व्यवहार में बदलाव
5: जी।
7: आज हम देख रहे हैं कि मौसम पहले की तुलना में अधिक अनिश्चित हो रहा है। कहीं कम समय में बहुत अधिक बारिश हो जा रही है तो कहीं लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। कभी मानसून की शुरुआत देर से होती है, कभी मानसून के बीच लंबा सूखा अंतराल आ जाता है। गर्मी के मौसम में भी आंधी, तेज वर्षा, ओलावृष्टि जैसी घटनाएं बढ़ती दिखाई देती हैं। झारखंड जैसे राज्य में इसका असर और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ की जो खेती है मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है
5: जी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि केवल कम या अधिक वर्षा ही समस्या नहीं है?
7: बिल्कुल, खेती के लिए केवल कुल वर्षा महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी जरूरी है कि वर्षा कब हुई, कितनी हुई और किस फसल अवस्था में हुई।
8: जी।
7: मान लीजिए पूरे महीने की वर्षा दो दिन या तीन दिन में हो गई, ऐसी स्थिति में बहुत सा पानी बहकर निकल जाता है और खेत में नमी लंबे समय तक नहीं रह पाता है। वहीं दूसरी ओर यदि फूल आने या दाना बनने की अवस्था में 10 से 15 दिनों का सूखा अंतराल आ जाए तो फसल की उपज काफी प्रभावित हो जाती है। इसलिए वर्षा की मात्रा के साथ साथ उसका वितरण भी बहुत महत्वपूर्ण है।
8: जी, तो हमारे झारखंड क्षेत्र के अलग अलग जिलों की स्थिति भी तो अलग है, क्या एक ही कृषि सलाह पूरे राज्य के लिए सही हो सकती है?
7: नहीं, पूरे झारखंड के लिए एक जैसी कृषि सलाह नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग कुछ क्षेत्र है इसमें जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, पलामू, गढ़वा, चतरा, वहाँ कम बारिश होती है, पश्चिम सिंहभूम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये वर्षा का वितरण सब जगह एक जैसा नहीं है। इसीलिए झारखंड के सभी जिलों की भूमि, वर्षा, ऊंचाई, मिट्टी और जलधारणा शक्ति एक जैसी नहीं होती है, इसलिए हर क्षेत्र के लिए अलग रणनीति बनाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए रांची और खूंटी की स्थिति पलामू और गढ़वा से बिल्कुल अलग है, जबकि पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम की समस्या भी अलग प्रकार की है।
8: जी, तो सबसे पहले रांची और खूंटी जैसे मध्य पठारी जिलों के किसानों के लिए क्या सुझाव देंगे आप?
7: रांची और खूंटी जैसे क्षेत्रों में ऊपरी भूमि से वर्षा का पानी जल्दी निकल जाता है।
8: जी।
7: क्योंकि ये ऊंचाई पे है, ऐसी भूमि में लंबे समय वाली धान की फसल हर बार सुरक्षित नहीं रहती। ऊपरी भूमि में कम अवधि वाली धान किस्में मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, रागी और तिल जैसी फसलों को प्राथमिकता दी जा सकती है। मध्यम भूमि में मध्यम अवधि वाली धान और निचली भूमि में धान आधारित खेती अधिक उपयुक्त हो सकती है। लेकिन निचली भूमि में एक समस्या यह भी है कि बहुत अधिक वर्षा होने पर जल भराव हो सकता है, इसलिए वहाँ उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है।
8: जी, तो हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह और बोकारो जैसे जिलों में किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
7: इन जिलों में मानसून की अनियमितता बुआई और धान की रोपाई को प्रभावित कर सकती है। ऐसे क्षेत्रों में किसानों को केवल धान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि मानसून समय पर आए तो धान की खेती की जा सकती है, लेकिन यदि मानसून में देरी हो जाए तो मक्का, अरहर, तिल, उड़द और रागी जैसी वैकल्पिक फसलों की योजना तैयार रखनी चाहिए। हम किसानों को यही कहते हैं कि उनके पास हमेशा मुख्य फसल योजना के साथ वैकल्पिक फसल योजना भी होनी चाहिए।
8: जी, तो पलामू, गढ़वा और लातेहार जहां अक्सर सूखे की समस्या देखने को मिलती है, वहां हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
7: पलामू, गढ़वा और लातेहार जैसे जिलों में वर्षा की अनिश्चितता और लंबे सूखे अंतराल बहुत बड़ी चुनौती है। इन क्षेत्रों में कम अवधि वाली और सूखा सहन करने वाली फसलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, रागी, ज्वार, बाजरा और तिल जैसे विकल्प उपयोगी हो सकते हैं। यदि धान की खेती करनी है तो कम अवधि वाली और अपेक्षाकृत सूखा सहनशील किस्मों का चयन करना चाहिए।
8: जी।
7: सबसे जरूरी है वर्षा जल का संरक्षण। खेत, तालाब, मेहरबंदी, छोटे चेक डैम और अन्य जल संरचनाएं यहाँ बहुत उपयोगी हैं। मानसून में जमा किया गया पानी बाद में सूखे अंतराल में दौरान जीवन सिंचाई के रूप में फसल को बचा सकता है।
8: जी, और जहाँ वर्षा अधिक होती है जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, वहाँ किसानों के लिए क्या सलाह देंगी आप?
7: जो पश्चिम भूमि है और पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां है, इन जिलों में कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है।
8: जी,
7: अगर पलामू से तुलना करें तो यहाँ पे काफी अच्छी वर्षा होती है, लेकिन अधिक वर्षा भी समस्या बन सकती है। बहुत अधिक पानी से जल भराव, मिट्टी कटाव, पोषक तत्वों का बहाव हो सकता है, इसलिए यहाँ केवल पानी बचाना ही नहीं बल्कि अतिरिक्त पानी का सुरक्षित निकास भी जरूरी है। ढाल वाली भूमि में कंटूर बंडिंग, घास की पट्टियाँ, वृक्ष आधारित खेती और मिट्टी संरक्षण तकनीकें अपनानी चाहिए। धान के साथ मक्का, अरहर, रागी और अन्य फसलों को शामिल करने से जोखिम कम किया जा सकता है।
8: जी, तो जैसे संथाल परगना के जिलों जैसे दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में हमारे किसान भाई क्या रणनीति अपनाएं जो फसल अच्छी हो?
7: देखिए, इन क्षेत्रों में वर्षा का वितरण काफी अनिश्चित हो सकता है। कभी अधिक वर्षा तो कभी लंबा सूखा अंतराल देखने को मिलता है। ऊंची भूमि में मक्का, अरहर, तिल, उड़द और रागी जैसी फसल उपयोगी हो सकती हैं। मध्यम और निचली भूमि में उपयुक्त अवधि वाली धान किस्में ली जा सकती हैं। धान के बाद यदि मिट्टी में नमी उपलब्ध हो तो चना, मसूर, सरसों और सब्जियों की खेती की जा सकती है। इससे एक ही वर्ष में खेत की नमी और जमीन दोनों का बेहतर उपयोग हो सकता है।
8: जी, तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या केवल खरीफ की फसलों पर पड़ता है कि और भी फसलों पर पड़ता है?
7: नहीं, इसका प्रभाव रबी फसलों पर भी पड़ता है।
8: जी,
7: जैसे सर्दियों में आजकल कम वर्षा होने लगी है और तापमान बढ़ रहा है। ये बढ़ता तापमान गेहूं, चना, मसूर, सरसों जैसे फसलों को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से फूल आने और दाना बनने की अवस्था में अधिक तापमान से उत्पादन घट सकता है। इसलिए रबी फसलों की समय पर बुआई बहुत जरूरी है। देर से बुआई करने पर फसल की संवेदनशील अवस्था अधिक तापमान के साथ समय आ सकती है।
8: जलवायु सहिष्णु कृषि वास्तव में क्या है?
7: बहुत सरल शब्दों में कहें तो ऐसी कृषि पद्धति जो बदलते मौसम, सूखे, अत्यधिक वर्षा, अधिक तापमान या जल भराव जैसी परिस्थितियों में भी नुकसान को कम करे और किसान को अपेक्षाकृत स्थिर उत्पादन दे,
8: जी,
7: उसे जलवायु सहिष्णु कृषि कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल अधिक उपज लेना नहीं है बल्कि जोखिम को कम करना है और खेती को टिकाऊ बनाना भी है।
8: जी जी, तो किसान भाई अपने खेत में इस पद्धति को कैसे अपना सकते हैं?
7: इसके लिए कुछ सरल और व्यवहारिक उपाय हैं। सबसे पहले खेत की स्थिति के अनुसार फसल चुनें।
8: जी,
7: ऊपरी भूमि में कम पानी वाली फसल, मध्यम भूमि में मध्यम अवधि की फसल और निचली भूमि में अधिक नमी सहने वाली फसल लें। दूसरा, केवल एक ही फसल पर निर्भर ना रहें। धान के साथ मक्का, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और सब्जियों को भी शामिल करें। तीसरा है, खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाएं। गोबर की खाद, कंपोस्ट, फसल अवशेष और हरी खाद की जलधारणा क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। चौथा, जहां पानी की कमी है वहां मल्चिंग और नमी संरक्षण करें। पांचवा, जहां जल भराव की समस्या है वहां जल निकासी की व्यवस्था करें। और सबसे महत्वपूर्ण, वर्षा जल को खेत, तालाब या अन्य संरचनाओं से संग्रहित करें।
8: जी, आजकल मौसम पूर्वानुमान भी किसानों तक आसानी से पहुंच रहा है, तो इसका उपयोग कितना महत्वपूर्ण है?
7: आज के समय में मौसम पूर्वानुमान जलवायु सहिष्णु कृषि का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि अगले 2-3 दिनों में भारी वर्षा की संभावना हो तो किसान सिंचाई रोक सकते हैं, कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव डाल सकते हैं और खेत में जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि शुष्क मौसम की संभावना हो तो सिंचाई और नमी संरक्षण की योजना पहले से बनाई जा सकती है। अर्थात मौसम की जानकारी किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है।
8: जी, हमारे झारखंड में सब्जी की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है, तो सब्जी उत्पादक किसान क्या सावधानी रखें?
7: सब्जियां मौसम के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं।
8: जी,
7: जैसे टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, मटर, फ्रेंच बीन और आलू जैसी फसलें जल भराव, अधिक तापमान और ओलावृष्टि से जल्दी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए सब्जियों को ऊंची क्यारियों पर लगाना, उचित जल निकासी

0: झारखंड के विभिन्न जिलों में जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु सहिष्णु कृषि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार। तो एखन हमरे मन सुनत रही आज कर बात में झारखंड के विभिन्न जिलों में जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु सहिष्णु कृषि और इके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा कुमारी और इनकर से गोठियात रहे हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: अब आओ हमरे कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी एक नागपुरी गीत से। ये गीत है सरिता देवी और संगी मनकर गावल।
1: तो चलो सुनीला।

0: तो ये बड़ा बढ़िया गीत रहे है नी, मन के एकदम रिझा दिलक
1: एकदम,
0: और आसरा करे कि हमारे कर किसान भाई बहन मन के भी ये गीत बढ़िया लाइक होगी।
1: तो अब हमारे मन नई उम्र कर नई फसल में सब्जी उत्पादक किसान राजीव उराव से करल भेंट के सुनीला और इनकर से गोठाए हैं हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: किसान भाई बहन मने आज हमार संगे एगो किसान है राजीव उराव, ये ग्राम चितरकोटा पोस्ट पाली रातू रांची कर हकें। तो ये खेती बाड़ी करें ना, तो आओ हमरे जानकारी करी ले कि ये अपन खेती बाड़ी कैसे कैसे करें से करवा रहे भाई रावर के जोहार कर थे।
2: जोहार
0: राजीव जी, एखन रावठना कतना जमीन है?
2: मोर जगह है एखन 7-8 एकड़।
0: 7-8 एकड़ जमीन है, तो 7-8 एकड़ जमीन में रावरे कतना जगह में खेती करी ले?
2: हम तो 3-4 एकड़ में खेती की सब्जी खेती करी ले और बाकी बात 3 एकड़ में धान खेती लगाई ले।
0: तो एखन तो धान लागल होगी?
2: हाँ धान लागल है।
0: एखन जैसे धान लगाए दे ही और आवे वाला समय में एखन का चीज के लगाव रहो रही?
2: आवे वाला समय में लगाव हम इन फरस बीन के लगाव, मटर लगाव और आलू।
0: ये फरस बीन, आलू और मटर, सबसे पहले रहो कौन चीज कर खेती करो?
2: सबसे पहले तो आलू का खेती करो।
0: आलू
2: का लगाव?
0: तो आलू रहो कैसे कैसे लगाव से हमार किसान भाई बहन उनके बता दो।
2: देखा हमार किसान भाई मन अगर जे आलू खेती कर ला तो उमन के हमार पर से बता चाहब कि उमने आलू रोपे ले खेत के पहले खेत के जोत के सुखावा, ओकर बाद सुखाल पाछे उके बेस से मतलब जोत कोड़ के रेडी करे खवेला। और कर में जैसे अगर ज़्यादा बड़ा जगह है 2-3 एकड़ है तो कर में तो के 4-6 गाड़ी गोबर खाद का जरूरत पड़ेला। और गोबर खाद के अगर तुम चाहवा तो गोटे खेत में छीट भी सकाला, छीट के उके रोटावेटर से जुतवा के पूरा सम करके लेबल कर सकाला। और नहीं तो वैसा नहीं पारला तो फिर उके जैसे कि हम इन कही ला देहाती भाषा में हर गढ़ा करी ला, उकर में गढ़ो गढ़ा में दे के आलू के रोप के गढ़ा गढ़ा में दे के उकर बाद फिर जैसे हम इन कर आलू लगा के अथी लेबर लगा के कुड़ी से भाठिए ला से टाइप से दार बनाए के चढ़ाए खवेला।
0: आलू कर कौन किस्म के रौरे लगाब एखन?
2: एखन आलू हम इन लगाब तो सफेद आलू में लगाब तो 34 और लाल आलू आवेला एंटीमिटम सिवान आवेला।
0: तो वो आलू कर बीज कर व्यवस्था कहाँ से हो जाएगा?
2: आलू कर बीज कर व्यवस्था हमें नहीं आप 15 बाजार से कीन के लेके जाइले।
0: और जोताई कर का साधन है?
2: जोताई का साधन हम तो खुद अपने ड्राइवर ही से ले गाड़ी चलाई ला, तो वह गाड़ी से अपन भी काम करी ला और अगला जो मालिक है उकरो काम कर देवी ला गाड़ी से।
0: अच्छा, रोरे ट्रैक्टर चलाई ले?
2: हाँ।
0: और ट्रैक्टर से मालिक कर भी काम करी ले और अपनो खेत कर
2: काम? अपनो खेत कर काम कर।
0: चलो बहुत बढ़िया है। एखन कौन कौन चीज लागल है रोर खेत में?
2: खान हमार खेत में लागल है बैगन लागल है, बैगन लगाए ही और तीता मिर्चा लगाए।
0: अच्छा, हरा मिर्च?
2: हरा मिर्चा। हाँ।
0: तो ये सब के खान तोड़ा थी?
2: हाँ ये सब के खान तो तोड़ा थी और तोड़ के बेची लागल है।
0: और बैगन लगाए और हरा मिर्चा जैसे लगाए हमारे किसान भाई बहन मैंने जे भी लगाए हैं तीकर में तो एखन रोग उग भी हुआ था?
2: हाँ बैगन में तो खास करके अधिक ज्यादा रोग आवे ला, कहे कि पानी जैसे अगर जल्दी लगावे तो बैगन में बहुत सा तना छिदक और फल छिदक इकर सबसे ज्यादा रोग आवे ला, जैसे कि मतलब अति फल के कीड़ा खाएला और उकर पौधा जो होवेला सके डाइट के उके खाए के अथी कर देवेला और झुलस जाएला, मुरझाए के झुलस जाएला और उकर बीमारी तो सबसे ज्यादा है। तो उकर ले हम इनके बहुत सा चीज के ध्यान देवे खवेला, उकर बैगन में सबसे ज्यादा दवाई देवे पड़ेला।
0: कौन कौन सा दवाई रहो रे देवीला
2: बैगन में? तो एखन सबसे ज्यादा देवीला सेमुडिस के और एक ठो आवेला काला घोड़ा करके रेडोमिल गोल्ड हो गेलो, छोटका पौधा हो तो और पौधा बढ़ गेलो तो उकर में तो के सेमोडिस चलाक हो तो। और बैगन में हमेशा दवाई के मतलब चेंज करके चलाक हो गेला, जैसे एखन सेमोडिस देली तो अगले बार काला घोड़ा कहल हम देहाती भाषा में तो उके देवी ला, मतलब एक बार इके तो एक बार उके मतलब हिने होने करके और एक ठो दवा चलावे तो जे कीड़ा लगल हो से मतलब नहीं हटौला और दवा के चेंज करबे तो वो अल्टी पल्टी हो के मतलब।
0: तो बैगन कर कौन किस्म के रौरे लगावी ले?
2: बैगन कर हमें लगा है VNR।
0: आज जैसे खन रोग कर बात कर ली तो कैसे पता चले लग हमारी बैगन कर जैसे पौधा में रोग लग गया लग से?
2: बैगन में रोग तो जैसे मौसम गर्मी अगर धूप मारे ला तो जब पता में कीड़ा लाई है नहीं से झुलस जाए ला तो पता चल जाए कि हम इनकी कर में कीड़ा लगा ला है। तो ओकर समीन देख के जान जाए कि ये वाला कीड़ा लगल है, तोड़ के हमीन हटा देवी ला।
0: अच्छा।
2: और तोड़ी ला तो तोड़ल पाछे के फिर हमीन के मतलब दवा के स्प्रे करे पड़े ला, ताकि ओकर में दवा जाए स्प्रे करब तो कीड़ा हुआ कर मर जाए।
0: तो कितना जगह में खन रहे बैगन कर खेती कर रही?
2: बैगन की खेती हम एक एकड़ में गए खन।
0: एक एकड़? तो एक एकड़ करे में रौर के पूंजी कितना लगल?
2: एक एकड़ में हमके तो लाई गए खन बैगन में 1.5 लाख रुपए पूंजी लाई गई।
0: अब फायदा कितना हो जी?
2: फायदा तो मार्केट के हिसाब से पता चली, कैसन रेट मिली होले फायदा होगी और कैसन हुई होले किसान के कभी घाटा भी होवेला।
0: और जे खेती बाड़ी हो जाए ला तिकर खपत कैसे करी ला?
2: इकर खपत हमें बाजार में करी ला। तो बाजार यहाँ हमें जगह लगे ला तामे 4-5 दिन, तो वह बाजार में लगा के ओके खपाई ला।
0: तो चलो रे बहुत बढ़िया अपन अनुभव के साझा कर लिया हमारे किसान भाई बहन मन के, रे जोहार है।
2: जोहार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरासी रालक ई कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
4: और ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण जी कर।
3: तो किसान भाई बहन बने आवरावरिन कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
4: विष्णु के देवविदा जोहार।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक खेती हेतु कीटनाशी अस्त्र, इसे हम कैसे बनाएंगे और इस

पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक हैं। इसलिए किसान भाई, प्राकृतिक खेती की जो संकल्पना है वह धीरे धीरे साकार

राजनीतिक संकट, कृषि कर्ज एवं चिंता मुक्त के साथ साथ किसान को समृद्ध, खुशहाल और स्वावलंबी बनाने वाली खेती ही प्राकृतिक खेती है। तो इस प्राकृतिक खेती से अधिक आमदनी कैसे ली जाए, इसके लिए किसान भाई हमें कीटनाशी अस्त्र बनाने की विधि हमें जाननी होगी, तभी जा कर के हम इससे बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे दरेकास्त्र या पौधास्त्र के बारे में कि इसे कैसे बनाना है। और यह जो दरेकास्त्र है किसान भाई, यह इसका घोल जब हम बनाएंगे तो यह घोल जो है और फल सब्जियों में जो रस चूसने वाले जो कीट हैं और जो छोटी इल्लियां होती हैं, इसकी रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 40 लीटर पानी, 2 लीटर देसी गाय का मूत्र, 400 ग्राम ताजा गोबर और दरेक या अन्य घर के आसपास उपलब्ध पौधों की जो टहनियां हैं उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। और फिर एक ड्रम में जो है किसान भाई, इसे डालकर बारी बारी 40 लीटर पानी, 2 लीटर देसी गाय का मूत्र, 400 ग्राम गोबर और 2

उस तरह से इसे हमें घुमाना है। 2 से 3 मिनट घुमाने के बाद इसे छोड़ देना है और 2 दिन तक सुबह शाम 2 से 3 मिनट घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर फिर इसे ढक कर रख लेना है। ध्यान यही रखना है इसमें किसान भाई कि इसमें सूरज की रोशनी और बरसा का पानी नहीं जाना चाहिए। किसान भाई, आम वातावरण में जो दरेकास्त्र है या जिसे हम पौधास्त्र भी कहते हैं 2 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन शीतकाल में इसे

जो है हमारे पशु नहीं खाते हैं, जैसे सीताफल हो गया, अमरुद हो गया, एरंड हो गया, दुराटा हो गया, धतूरा हो गया, पपीता हो गया, आप इनकी पत्तियां कोई 5 पत्तियों का आप उपयोग कर सकते हैं। 4 लीटर देसी गाय का मूत्र इसके लिए इस्तेमाल करना है और इन्हें जो है उसी तरह से घुमाना है और यह 48 घंटे में आपका जो है किसान भाई ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाता है। इसको कपड़े से अच्छी तरह छान लें और इसके बाद इसका आप भंडारण कर लें और 1 लीटर ब्रह्मास्त्र को 40 लीटर पानी में मिलाते हुए 1 बीघा खेत में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और इसका भंडारण आप 6 माह तक कर सकते हैं। और सावधानी वही बरतनी है कि धूप की रोशनी इस पे ना पड़े और वर्षा का पानी इसमें ना जाए जो आपने ब्रह्मास्त्र को बना रखा है। और जो है तीसरा जो है प्रमुख जो है उसके बारे में भी आज हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे, अग्निअस्त्र। किसान भाई इसके लिए भी बनाने के लिए जो प्रमुख सामग्री है, इसके लिए देसी गाय का मूत्र 4 लीटर, दरेक या अन्य उपलब्ध पौधों की जो पत्तियां, पत्तों की जो चटनी है उसे हम पीस लेंगे, उसे 200 ग्राम, और तंबाकू पाउडर 100 ग्राम, या तंबाकू को आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं। तीखी हरी मिर्च की चटनी 100 ग्राम और देसी लहसुन की चटनी 50 ग्राम आपको डालना है। उसके बाद आप सभी को डालकर और उसके ऊपर ढक्कन रख देना है। किसान भाई फिर इसे धीमी आंच पर 1 उबाल आने तक उबालना है। पहली जैसी उबाल आता है उसके तुरंत बाद आपको पतीले को कपड़े की सहायता से उतार कर नीचे रख लेना है और इस पतीले में 48 घंटे तक इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जो आपका अग्निअस्त्र है। तो ठंडा होने के बाद किसान भाई सूती कपड़े की सहायता से अच्छी तरह से छान कर 1 बर्तन में इसका भंडारण कर लेना है। ध्यान यह रहे कि भंडारण ऐसे स्थान में करें जहां पर सूरज की रोशनी और वर्षा का पानी इसमें न जा सके और 1 लीटर अग्निअस्त्र को 40 लीटर पानी में मिलाकर आप 1 बीघा खेत में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे रस चूसने वाले कीट और अंदर और बाहर की जो सुंडियां हैं वह नियंत्रित हो जाएंगी और अग्नि अस्त्र का भी आप भंडारण 6 माह तक के लिए आप कर सकते हैं। और जब भी आप इनका छिड़काव करें तो दोपहर के बाद अगर आप करते हैं किसान भाई तो आपको इसमें अधिक लाभ मिलेगा। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें। बनाने की विधि आप जान ही गए कि किस तरह से बनाना है और इसका हमें उपयोग कैसे करना है। और एक और है अर्क, वह उसको हम लोग बोलते हैं किसान भाई दर्पणी अर्क। दर्पणी अर्क को तैयार करने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए उसके लिए 40 लीटर पानी, 4 लीटर देसी गाय का मूत्र, 400 ग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 100 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम अदरक की चटनी और 1 चुटकी हींग पाउडर, इन सब को जो है किसान भाई हमें मिला लेना है।

आप यह दर्पणी अर्क बनकर तैयार हो जाएगा। और जहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है किसान भाई, वहां कुछ समय ज्यादा लगेगा। और यह जो है, जैसे ही आपका अर्क तैयार होता है, इस घोल को आप कपड़े से छान लें और छानने के बाद कपड़े को निचोड़ लें ताकि सारा अर्क घोल में आ जाए। और 1 लीटर दर्पणी अर्क को 40 लीटर पानी में मिलाते हुए आप 1 बीघा खेत या फसल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 40 लीटर

और सभी जो अस्त्र हैं इसका जो छिड़काव है किसान भाई, याद रखना है कि दोपहर के बाद करने से ज्यादा बेहतर परिणाम मिलता है। और दर्पणी अर्क का भी भंडारण आप 6 माह तक कर सकते हैं। यह अर्क सभी तरह के कीट और सुंडियों को नियंत्रित करता है। दर्पणी अर्क को घोलते समय नाक पर रुमाल अवश्य बांध लें और दर्पणी अर्क बनाने के दौरान यथा भंडारण स्थान को बच्चों तथा गाय बैल इत्यादि की पहुंच से दूर रखना है। यह बात आप विशेष ध्यान देंगे और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जब भी आपके फसल में, साग सब्जी में, पेड़ पौधों में किसी तरह का कीट पतंगा सुंडी इल्ली का प्रयोग, आप उसमें इसका व्यवहार कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई प्राकृतिक खेती हेतु कीटनाशी अस्त्र बनाने का और उसका उपयोग करने का विधि। किसान भाई आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, एक सफल किसान से भेंट, बाजरा की खेती। भेंट वार्ताकार हैं कपिल देव ठाकुर, जो ग्राम तुकबेरा नावा बाजार पलामू के निवासी हैं, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के नावा बाजार प्रखंड के तुगबेरा गांव के एक सफल किसान कपिल देव ठाकुर, जिनसे हम आज बातें करेंगे जैविक विधि से खेती की, इससे क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, इन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है जैविक विधि से खेती करके। उसके साथ ही ये बाजरा की खेती कर रखे हैं, मोटे अनाजों की खेती कर रहे हैं, इस संदर्भ में हम इनसे बातें करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि अभी मोटे अनाजों में किसकी खेती हो रही है?
1: मोटे अनाज में मड़ुआ हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, जिनोरा जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं, जिनोरा कभी होता है, मकई हुआ, कुल्थी हुआ, तो इस सब का खेती जो है से हो रहा है। और तेलहन के इसमें जो है से ये नाइजर हुआ, नाइजर का भी ये है, तीसी हुआ, इसका भी खेती हो रहा है। मतलब सरकार के तरफ से भी इसमें है कि अधिक से अधिक मोटे अनाज की खेती करना है। इस पर हमारे जो अधिकारी लोग कृषि से संबंधित हैं वो सबों का सुझाव आ रहा है कि मोटे अनाज की खेती किया जाए।
0: तो मोटे अनाज में अभी आपने क्या लगा रखा है?
1: मकई लगाए थे, बाजरा लगाए हुए हैं, कुल्थी लगा हुआ है, और इसको लगाना है अभी उड़द वगैरह जो है
0: वो तो दलहन में हो गया। हाँ, ना तो अब मोटे अनाज में बाजरा, बाजरा की देख रेख कैसे कर रहे हैं आप कपिल देव ठाकुर जी?
1: जी, बाजरा तो मतलब ऐसे जमीन में लगाना है जहाँ पर पानी का जमाव नहीं हो। तो ऐसे ही हम लोगों का क्षेत्र तो सूखा क्षेत्र है, और इस वर्ष प्रकृति का मार जो है से किसानों के ऊपर मैंने समझी कि कहर बन के बरप रहा है। तो इस मौसम में इस बार जो है से बाजरे के लिए बहुत सुनहरा रहा है।
0: ये क्या प्रतिकूल, इसके लिए क्या अनुकूल वातावरण होना चाहिए?
1: कम बारिश में ये होने वाला फसल है।
0: अच्छा।
1: जहाँ पानी का जमाव नहीं हो पाता है, टड़िहन जहाँ खेत है, तीन नंबर का खेत है, उस खेत में जो है से बाजरे की खेती किया जा सकता है, जिनोरा का खेती किया जा सकता है।
0: अच्छा।
1: और वैसे ही खेत में हम लोग लगाए हुए हैं।
0: जी, क्या क्या सावधानियां बरतते हैं इसमें?
1: इसमें जब उसकी बुआई होता है तो उस समय देखना है कि अगर हल्का फुल्का बारिश हो गया, खेत में अगर पानी के जमाव हो रहा है तो उसको देख करके पानी को निकाल देना है।
0: अच्छा।
1: किसी तरह से पानी जमने नहीं देना है, नहीं तो उसका अंकुरण जो है से खराब हो जाता है, सड़ जाएगा।
0: अच्छा।
1: दूसरी बात है, बुआई के समय सावधानी बरतना है कि बहुत ज़्यादा सघन नहीं लगाएं।
0: अच्छा।
1: कम बीज डालें खेत में,
0: जैसे
1: कि एक एकड़ में मान के चलिए कि 2.5 से 3 केजी, अधिक से अधिक बहुत ज्यादा खेत खराब है तो 5 केजी तक, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ये जो है से उसका बीज का जो है से बुआई करें और उसको लाइन में करें। लाइन में अगर बुआई करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा पैदावार मिलेगा, इसलिए कि उसका पौधा जो है ना से मोटा होता है, बड़ा होता है। अगर ज्यादा सघन कर दीजिएगा तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं हो पाता है,
0: मतलब विकास
1: पतला नहीं, विकास नहीं हो पाएगा, पतला पतला रह जाएगा, और जब पतला रह जाएगा तो बालियां कमजोर हो जाएगी उसमें। और फिर उसमें सावधानी क्या बरतना है, ध्यान देना इस बात के है कि जब उसमें बालियां आती है तो उस समय पक्षी बहुत परेशान करते हैं, तो उसकी रखवाली करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि किसान भाई अगर उसमें चाहें तो प्लास्टिक या जो घर में पड़ा हुआ है मिसयूज कपड़ा है, पुराना फटा चिटा, तो उसका थैली नुमा बना करके और उसमें जब दाना आ गया है
0: तो
1: उसमें उड़ा दें, ढक दें, या फटा टूटा मच्छरदानी वगैरह है तो उसको कर दें। इससे क्या है कि पक्षियों से बचाव किया जा सकता है।
0: तो इसका मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा?
1: नहीं, उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उसका परागण जब हो जाता है ना तो उस समय की बात है, जैसे फूल है तो फूल तो पक्षी नहीं बर्बाद करेंगे, जब उसमें दाना आ जाता है ना, दाना जब भरा होने लगता है उसका, हम लोग ऐसे देहात में बोलते हैं कि गदरा रहा है, तो उस समय जो है से पक्षी बहुत तबाह करते हैं, खास करके जो सूगा का जो पक्षी प्रजाति है तो सूगा बहुत परेशान करते हैं,
0: अच्छा
1: तो उससे बचाव करना चाहिए। और उससे बचाव का ऐसे तो मान लीजिए रखवाली करने के किसान के पास तो बहुत काम है, तो फटा टूटा घर में जो मिसयूज हो रहा है मच्छरदानी, उसका उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक है तो उसको ढक सकते हैं उससे,
0: जी
1: और उसका उपज जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज के परिवेश में जो बीमारियां हो रही है फास्ट फूड खाने से, इस तरह का जो जितना एडवांस फूड जो हम लोग ले रहे हैं, खासकर किसान के पास तो नहीं लेकिन जो शहर में लोग रह रहे हैं उनके पास बहुत तरह की बीमारियां हो रही है, तो भोजन जो विषाक्त रूप में ले रहे हैं तो इसका मुख्य कारण है, तो और उसका उपचार किया जा सकता है।
0: अच्छा
1: ऐसे अभी तक तो हमारे खेत में किसी तरह का कोई बीमारी नहीं लगा।
0: सिंचाई कैसे करते हैं आप इसको? कभी तो
1: इसको
0: सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती होगी।
1: अभी इस सीजन में जब इसका खेती किया जा रहा है तो सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं है।
0: अच्छा
1: ये जो है इसका हम केवल बाजरे की भी खेती कर सकते हैं, मिश्रित खेती कर सकते हैं अरहर के साथ में
0: अच्छा अगर एक फसल बर्बाद भी होता है तो दूसरा फसल आपको आय दे दे देता है।
1: देता है।
0: अब हम ये बात कर लें आपसे कि अभी जो भी खेती आप कर रहे हैं, आपने मोटे अनाजों की भी खेती कर रखी है, दलहनी फसलों की भी खेती कर रखी है,
1: जी
0: अनाज फसलों में संक्षिप्त में हमको सिर्फ बताएंगे, आपकी
1: जी
0: धान की खेती की है?
1: हाँ, धान का खेती की हुई है।
0: अच्छा कैसी है पानी की स्थिति कैसी है?
1: पानी का स्थिति तो जो प्रकृति के साथ है तो हम भी उसी में हैं, लेकिन हमारे पास पानी का अभी तक जो जल स्रोत है वो अभी तक बरकरार है। और खुशी की बात यह है कि इस पलामू के धरती पर नावा बाजार प्रखंड में पहला किसान मैं हूँ जो ब्लैक राइस का खेती किए हुए हूँ, जो शुगर फ्री है, काला चावल का खेती किए हुए हूँ, 3 एकड़ में लगाया हूँ और बहुत ही अच्छा है। अब प्रोडक्शन कितना मिलता है, यील्ड इसका क्या होता है, अभी कुछ हम बता नहीं सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: हालांकि फसल जो है से बहुत अच्छा है और पूर्णतः ऑर्गेनिक है,
0: जी अब हम
1: जैविक खेती इसको जैविक किए हुए हैं, लेकिन हम किए हैं इस वर्ष, लेकिन खेत मेरा पहले से रसायन यूज किया हुआ है तो वो पूर्णतः अभी ऑर्गेनिक नहीं रहेगा, लेकिन इसको मैं अभी बंद कर दिया हूँ, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हूँ और धान का फसल अच्छा है।
0: अच्छा ये जैविक खेती की बात चुकी आ रही है सामने।
1: जी हैं, और उससे जैविक कीटनाशी भी तैयार कर सकते हैं, उससे दोनों हो जाएगा, और जो खेत में जो फसल का अवशेष बच जाता है उसको भी किसान भाई जलाए नहीं, उसको खेत में ही जो है से जोत दें, उसको दबा दें ताकि वो भी एक उर्वरक तैयार हो जाएगा।
0: जी बहुत बार ऐसा होता है कि अवशेष को हमारे किसान भाई लोग इकट्ठित करके जला देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए।
1: नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए,
0: जी
1: इससे जो है से पर्यावरण भी प्रदूषित होगा और आपका उर्वरक भी बर्बाद हो रहा है, यानी दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, तो इस तरह के सोच से अब दूर निकलने की जरूरत है। किसान भाई को मैं सलाह देता हूँ कि फसल का अवशेष जो रहता है अगर उस तरह का है, हरा कुछ है तो पशु को खिला दें,
0: जी
1: उससे भी आपको मान 3 गुना फायदा हो, 3 गुना फायदा हो गया तीसरे चरण का, जैसे आपके पशु के चारा की जरूरत है तो उसका मेंटेन हो गया।
0: अच्छा ये
1: और
0: बाजरा वाला तो चारा बहुत अच्छा हो जाता होगा पशु
1: जी
0: के लिए ना?
1: हाँ हो जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है उसमें, जब बाजरे की आप उसका ग्रेन दाना को जब आप उत्पादन में ले रहे हैं तो उसका चारा नहीं हो पाता है, उसका
0: अच्छा
1: चारा पहले ही बाजरा को फूटने से पहले अगर हम काट देते हैं तो पशु चारा के लिए हो जाता
0: उपयुक्त हो
1: है,
0: जाता है।
1: उपयुक्त हो जाता है। और
0: और अब हम ये आपसे जानेंगे कि मोटे अनाज की खेती में क्या संभावना पाते हैं आप?
1: मोटे अनाज देखिए पलामू क्षेत्र के लिए मोटे अनाज के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। हमारे यहाँ आज मान लीजिए कि देखा देखी धान गेहूं की खेती हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जी, उत्पादन भी कम नहीं होता है,
0: जी
1: मकई का भी उत्पादन कम नहीं होता है, बाजरे का उत्पादन कम नहीं होता है, ज्वार का उत्पादन कम नहीं होता है, कुल्थी का उत्पादन कम नहीं होता है, जितना हम तुलनात्मक।

से भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थे कपिल देव ठाकुर और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे साथी भाई संतोष कुमार। किसान भाई, चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दें। आज स्थानीय शहर डालरनगंज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 86% जबकि शाम की आर्द्रता 72% दर्ज की गई। वर्षापात 0.01 मिली मीटर। इसी के साथ ही हमारा आज का ग्रामीण सभा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त प्रदीप को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।

हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
4: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
3: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
5: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
6: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
9: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
8: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसजी कराई है।
9: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे रे, अरे कहाँ चल दिए
10: एनएसबी कराने?
9: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में बेटियों की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने गुआ गोलीकांड के शहीदों को किया याद। कहा, शहीदों की कुर्बानी और उनके संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को देती रहेगी प्रेरणा। भाजपा ने छात्र हितों को लेकर की आवाज बुलंद। रांची में आदित्य साहू ने संभाला मोर्चा। बाबूलाल मरांडी ने दुमका में किया नेतृत्व। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नए वोटरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए तेजी लाने का दिया निर्देश। बीएलओ को विशेष अभियान चलाने का निर्देश। और एशियन गेम्स के लिए रवाना हुई भारतीय महिला हॉकी टीम। झारखंड की 4 बेटियां टीम में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1990 छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान विभिन्न संकायों की 53 मेधावी छात्राओं को स्वर्ण पदक, चांसलर मेडल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
1: दीक्षा केवल पढ़ाई पूरी होने का अवसर नहीं है, बल्कि जीवन की एक नई यात्रा का आरंभ है। आपको जो उपाधि मिली है वो आपकी मेहनत और योग्यता का प्रमाण है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान को अपने व्यवहार, अपने कार्य और अपने निर्णयों में उतारने का कार्य करें।
0: राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार कल रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 3,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने आज प्रेसवार्ता में बताया कि समारोह में पहली बार 2 शिक्षाविदों को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी।
2: दीक्षांत समारोह कई नवाचारों से युक्त है। हमारे कुलाधिपति गरिमा में उपस्थिति रहेगी, साथ हमारे विशिष्ट अतिथि भी रहेंगे जिनको हम आनंद उपाधि भी दे रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय एक नृत्य नाटिका है, उनकी तरफ से रांची विश्वविद्यालय का जो 66 वर्षों का इतिहास रहा है एक नृत्य नाटिका होगी और उसके बाद विभिन्न डीन है वो उपाधि देंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड की धरती हमेशा से जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की धरती रही है। श्री सोरेन ने कहा कि वीरों का सपना और उनके संघर्ष की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। छात्रों के मुद्दे पर भाजपा ने आज से 4 दिवसीय राज्यव्यापी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव कार्यक्रम शुरू किया। पहले दिन रांची समेत 5 जिलों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार को छात्रों के मुद्दे पर घेरा। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच और आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की।
3: भारतीय जनता पार्टी यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देगी और जो फर्जी मुकदमे हुए जब तक वापस नहीं होगा तब आगे भी आंदोलन को रुख अख्तियार करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे और इस सरकार को मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एफआईआर वापस करना पड़ेगा। हम तो अनेक प्रकार के विभिन्न चरणों में आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं।
0: छात्र हितों की मांग को लेकर दुमका में आयोजित घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। वहीं हजारीबाग में घेराव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री दास ने कहा कि श्री गांधी के इशारे पर हजारीबाग समेत झारखंड के कई जिलों में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और झूठा मुकदमा दायर किया गया।
4: आंदोलन के समय आंदोलन को राहुल जी ने समर्थन दिया, लेकिन जब छात्रों पर लाठी चार्ज हुई, छात्रों पर फर्जी केस हुए तो राहुल गांधी जी का कोई कमेंट नहीं, क्योंकि उनके इशारे पर ही हेमंत सोरेन जी ने छात्रों पर झूठा केस कराया जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी भर्त्सना करती और अविलंब झूठे फर्जी केस को सरकार वापस ले।
0: छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा जारी है। उन्होंने यात्रा के क्रम में आज पलामू प्रमंडल में हुंकार भरी। इस दौरान श्री महतो का युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान श्री महतो ने जोर देकर कहा कि भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए है ताकि मेधावी युवाओं के सपने न टूटे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत नए वोटरों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरा करने वाले सभी पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने BLO को घर घर जाकर छूटे हुए पात्र युवाओं की पहचान करने तथा शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने SIR के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने आज रांची में प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस और झामुमो की सरकार राज्य में SIR नहीं होने देना चाहती और अब इस बात में लगी है कि एक खास वर्ग के अधिक से अधिक लोगों का नाम वोटर लिस्ट में कैसे जोड़ा जाए। इधर भाजपा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को खास वर्ग के लोगों में घुसपैठिया नजर आता है, जबकि जनता के असली मुद्दों पर उसके पास कोई जवाब नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज रांची के CMPDI में समीक्षात्मक बैठक कर अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विषयों को गंभीरता से सुनते हुए उचित समाधान के लिए आवश्यक पहल का आश्वासन दिया। श्रीमती लकड़ा ने कहा कि आदिवासी और वंचित वर्गों के अधिकारों हितों

तथा कल्याण के लिए आयोग निरंतर प्रतिबद्ध है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर नक्सली संगठन JJMP के सदस्य रोहन गंजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादी के पास से कल से 11 सितंबर भारी बारिश केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। बोकारो और समेत कुछ अन्य इलाकों में

0: माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
1: निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
1: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
0: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
1: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
0: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
1: और लड़के की 21 वर्ष है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आज के एक रंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म तोहफा के गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत काव्य पाठ। काव्य पाठ कर रहे हैं अमीनुल्लाह अंसारी।

मुबारक। और ये बंद भी समाप्त फरमाए कि वतन के लिए हम हैं करते दुआएं।

दो। ये कलाम भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, आप समाप्त फरमाएं कि हर तरफ फूल मोहब्बत का खिलाते रहिए, हर तरफ फूल मोहब्बत का खिलाते रहिए, और प्यार की खुशबू से दिल सबका बसाते रहिए, प्यार की खुशबू से दिल सबका बसाते रहिए, हर तरफ फूल मोहब्बत का खिलाते रहिए, प्यार की खुशबू से दिल सबका बसाते रहिए। और ये शेर कि देख लेगा वो हकीकत में भी अपना चेहरा, देख लेगा वो हकीकत में भी अपना चेहरा, उसके किरदार का आईना दिखाते रहिए, उसके किरदार का आईना दिखाते रहिए। और ये शेर समाअत फरमाएँ कि तीरगी में न भटक जाए मुसाफिर कोई, तीरगी में न भटक जाए मुसाफिर कोई, राहे तारीक में एक दीप जलाते रहिए, राहे तारीक में एक दीप जलाते रहिए, राहे तारीक में एक दीप जलाते रहिए। और अक्ल पर तेरे पड़े हैं जो न जाने कब से, अक्ल पर तेरे पड़े हैं जो न जाने कब से, गफलतों के उसी पर्दे को हटाते रहिए, गफलतों के उसी पर्दे को हटाते रहिए, हर तरफ फूल मोहब्बत का खिलाते रहिए, प्यार की खुशबू से दिल सबका बसाते रहिए। और गमज़दा दिल को भी मसरूर जो कर दे यारो, गमज़दा दिल को भी मसरूर जो कर दे यारो, ज़िंदगी की वो कहानी भी सुनाते रहिए, ज़िंदगी की वो कहानी भी सुनाते रहिए। और उसकी गैरत नहीं हाथों में भी लेने देती, उसकी गैरत नहीं हाथों में भी लेने देती, अरे जाम आँखों से मगर आप पिलाते रहिए, जाम आँखों से मगर, जाम आँखों से मगर आप पिलाते रहिए। और मिल नहीं सकता मगर देख रहा हूँ हरदम, मिल नहीं सकता मगर देख रहा हूँ हरदम, घर में पहले की तरह रोज़ ही आते रहिए, घर में पहले की तरह रोज़ ही आते रहिए। और मक्ता का शेर कि जिनसे बेदार रहे दिल भी हमेशा रहबर, जिनसे बेदार रहे दिल भी हमेशा रहबर, कौमो मिल्लत को वो पैगाम, कौमो मिल्लत को वो आशआर सुनाते रहिए, कौमो मिल्लत को वो पैगाम सुनाते रहिए, जिनसे बेदार रहे दिल भी हमेशा रहबर, कौमो मिल्लत को अशआर सुनाते रहिए, हर तरफ फूल मोहब्बत का खिलाते रहिए, प्यार की खुशबू से दिल सबका बसाते रहिए, प्यार की खुशबू से दिल सबका बसाते रहिए। और तीरगी में न भटक जाए मुसाफिर कोई, तीरगी में न भटक जाए मुसाफिर कोई, राहे तारीक में एक दीप जलाते रहिए, और गफलतों के उसी पर्दे को हटाते रहिए, अरे अक्ल पर तेरे पड़े हैं जो ना जाने कब से, गफलतों के उसी पर्दे को हटाते रहिए, जिनसे बेदार रहे दिल भी हमेशा रहबर, कौमो मिल्लत को अशआर सुनाते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत काव्य पाठ कर रहे थे अमीनुल्लाह अंसारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। चित्रपट से सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीत।

0: तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
4: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर

0: भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
2: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
3: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंग क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जदीद तरीन रेलगाड़ियों और मेट्रो के कोच बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर की तेजी से होती कायापलट को भी उजागर किया।
1: आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने नवसारी में नौ तामीर शुदा बीजेपी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद एक पुरहजूम अवामी रैली से खिताब किया। जनाब मोदी ने शहरियों और अवामी नुमाइंदों से जोर देकर कहा कि वो समाजी खिदमात और सफाई को रोजमर्रा की बिला कोशिश आदत बना लें, साथ ही इस बात को यकीनी बनाएं कि तरक्याती स्कीमों की रसाई आखिरी फर्द तक हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतअद्दिद रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। रूस यूक्रेन जंग के सिलसिले में तर्जुमान ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ राबते में है और इस बात पर गौर कर रहा है कि इस लड़ाई को रोके जाने के सिलसिले में क्या कोई नजरियात और तजावीज हैं जो मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड का दौरा किया था। अपनी बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि भारत ने मुसलसल ये मौकफ बरकरार रखा है कि ये दौर जंग का नहीं है और कोई भी हल जंग के मैदान से नहीं निकलेगा। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब से मुतालिक बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय फॉरेंसिक टीम और टनल में बचाव टीम जमीनी सतह पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम इस वक्त काठमांडू में 2 लेबोरेटरियों में काम कर रही है और वो 1200 डीएनए नमूनों की जांच कर रही है। जनाब जायसवाल ने कहा कि 275 भारतीय शहरी लापता हैं, जिनमें वो 49 अफराद भी शामिल हैं जो चीन की जानिब लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 169 भारतीय शहरियों को अब तक बचा लिया गया है।
2: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के आवाम और हुकूमत के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने जल्द मदद का हाथ बढ़ाया और वो राहत इमदाद, बचाओ और तामीर नौ की कोशिशों में मदद जारी रखेगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि 7 तैयारों के जरिए अब तक 95 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है और कुछ और इमदादी सामान जल्द भेजा जाएगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत चीन ताल्लुकात रफ्ता रफ्ता मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताल्लुकात के इस तरह रफ्ता रफ्ता मामूल बनाने और अवाम से अवाम के दरमियान रबते इंतहाई अहम हैं। इस महीने की 6 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय हिस्से के वाचा में और कल चीन की जानिब दमाई में पहली आला सीनियर मिलिट्री कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग के सिलसिले में सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि मगरबी सेक्टर में भी इसी तरह का तरीक़ेकार मौजूद है।
2: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा श्रीलंका दौरे पर आज कोलंबो पहुंचे। उनके दौरे का मकसद दो तरफा दिफाई और बहरी ताउन को वसत देना है। बिंद्रा नाई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के नायब वजीर दिफा अरुणा जयासिकरा और श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने जनाब सिंह का पुरजोश खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर दिफा मजबूत दिफाई और बहरी साझेदारी समेत बाहमी तौर पर फायदेमंद मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मकसद से श्रीलंका की क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। जनाब सिंह अपने दौरे में कोलंबो में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। रवानगी से कबल अपने बयान में जनाब सिंह ने भारत की पड़ोस मुकदम पॉलिसी और महासागर विजन के तहत श्रीलंका को भारत के अहम साझेदारों में से एक करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

के लिए भारत की अमन कोशिशों की हिमायत की है। रूस ने इस मामले पर भारत के मौकफ से वाबस्तगी का इजहार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कोदे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है आपके हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाली वर्सटाइल गायिका आशा भोसले पर। आठ सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में जन्मी संगीत नाटकों के अभिनेता गायक और संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की सुपुत्री आशा को फिल्मों में गाने का पहला अवसर तब मिला जब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। 1943 की ये मराठी फिल्म थी माझ बाळ। संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। हिंदी फिल्मों में आशा जी की शुरुआत 1948 के हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया के गीत से हुई। श्रोताओं, आशा भोसले के गाए हिंदी फिल्मी गीतों के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में तो सभी जानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे इस प्रतिभावान गायिका के हिंदी फिल्म संगीत के अलावा गाए लगभग सभी प्रकार के गीतों की। जी हां, भक्ति रचनाएं, गजल गीत, लोक गीत, कव्वाली, पॉप गीत, अन्य भाषाओं के गीत, विदेशी संगीतकारों तथा गायकों के साथ गायन और शास्त्रीय संगीत भी। हाँ।

शास्त्रीय संगीत का एक मंजा हुआ कलाकार ही अपनी गायकी में इतना वैविध्य दिखा सकता है। आशा भोसले की गायकी की सफल यात्रा हिंदी और मराठी में समान रूप से जारी रही।

संत अमृत राय हो, संत जनाबाई हो, संत ज्ञानेश्वर हो या किसी और संत की रचना, आशा भोसले के भक्ति रस में डूबे सुरों से सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। मराठी भाव गीतों की दुनिया में आशा जी का नाम शीर्ष पर है। गदी माडगुड़कर, बाभ बोरकर, आरती प्रभु, शांता शेड़के, शांताराम नांदगांवकर, सुधीर मोघे और सुरेश भट्ट जैसे नामचीन कवियों की रचनाएं, जब वसंत प्रभु, दत्ता डावजेकर, सुधीर फड़के, हृदयनाथ मंगेशकर, श्रीनिवास खड़े और श्रीधर फड़के जैसे ख्यातनाम संगीतकारों की सुरावली में बंधकर आशा भोसले के कंठ से निकलती हैं, तब वो सुनने वालों के दिल में उतरकर उनके भाव विश्व को हिलाकर रख देती है।

महाराष्ट्र में संगीत प्रेमियों के मन में नाट्य संगीत का विशेष स्थान है और उसमें नाट्य गीत यदि आशा भोसले के स्वर में हो तो क्या कहने।

साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं को आशा जी का स्वर मिला तो ये गीत फिल्मी हो या गैर फिल्मी अभिजात हो गए, क्लासिक्स में गिने गए। जैसे जयशंकर प्रसाद की ये रचना, संगीतकार जयदेव।

कभी नेकी भी उसके जी में आ जाए है मुझसे। गालिब साहब का ये कलाम और ऐसी ही हिंदी उर्दू की अन्य रचनाएं आशा जी के स्वर में सुनकर श्रोताओं के दिलों में आज भी चैनो करार आ ही जाता है और उभरने लगती हैं यादें गजलों के उस एल्बम की जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था गुलाम अली के साथ मिराज।

चांद के साथ साथ सज जाती है आशा जी के जादुई सुरों की महफिल। सामईन के जहन में आज भी उन्हीं दिनों में जाने माने गजल गायक हरिहरन के साथ आशा भोसले ने रिकॉर्ड किया था एल्बम आबशार।

आशा जी की आवाज के कायल उनकी आवाज के दीवानों को मिला था उसके बाद एक नजराना। एल्बम का नाम आपकी आशा।

आपकी आशा। इस एल्बम के सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी की कलम से उतरे थे। संगीतकार राहुल देव बर्मन। मजरू साहब का ही लिखा हुआ गाना गाकर आशा भोसले ने अपने आप को साबित किया था पॉप म्यूजिक की दुनिया में। संगीत लेस्ली लुई का। एल्बम का नाम जानम समझा करो।

80 के दशक के जाते जाते और 90 के दशक की शुरुआत में संगीत प्रेमियों में फिल्म संगीत की बनिस्बत गैर फिल्मी संगीत कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ था। गीत, गजल, इंडी पॉप और भजनों के नए नए एल्बम बाजार में आ रहे थे। इसी दौरान संगम हुआ संगीत की दुनिया के तीन महान हस्तियों का, जो फिल्मों में इससे पहले कई बार हो चुका था। जी हाँ, गुलजार, आर डी बर्मन और आशा भोसले। इस त्रिवेणी संगम से उभरा एक अनूठा, अनोखा, अलबेला एल्बम दिल पड़ोसी है।

पड़ोस में ही नहीं चाहने वालों के दिल में ही घर बना लिया इन गीतों ने, और ये गाने आज भी गूंज रहे हैं। गैर फिल्मी गीतों की लोकप्रियता के इस दौर में अपनी बहन गान कोकिला लता मंगेशकर और गजल नवाज जगजीत सिंह के साथ मिलकर आशा भोसले ने अपने चाहने वालों को जो तोहफा पेश किया था, उस एल्बम का नाम था दिल कहीं होश कहीं।

मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ बांग्ला भाषा में आशा भोसले के गाए गीतों का एक सफलतम करियर रहा है। आशा जी ने सबसे पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड किया था 1958 में। मन्ना डे द्वारा संगीतबद्ध इस युगल गीत में उनके साथ आवाज थी विनोद चट्टोपाध्याय की। अगले ही वर्ष 1959 में आशा भोसले ने अपना पहला पूजो गीत रिकॉर्ड किया। ये वो देवी स्तुति के गीत होते हैं श्रोताओं, जो बंगाल में नवरात्रि के समय प्रकाशित होते हैं। आरडी बर्मन ने हिंदी फिल्मों के कुछ लोकप्रिय गीतों को बांग्ला में रिकॉर्ड करवाया था। ये गीत हैं।

कानों में शहद घोलती इस आवाज में किसी भी भाषा के गीत हों, सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्मी गीतों का आज जिक्र ही नहीं होगा। आशा भोसले के गाए कुछ फिल्मी गीत अनसुने हैं या बहुत कम सुने जाते हैं, जैसे फिल्म अनकही का ये गाना।

सन 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेट ली के साथ आशा भोसले ने एल्बम रिकॉर्ड किया था, हाँ मैं तुम्हारा हूँ।

1980 के दशक के मध्य में बॉय जॉर्ज और स्टीफन ल्यूसकॉम के साथ आशा भोसले ने गीत गाए हैं। 1997 की बात है, युवकों के एक संगीत समूह कोड रेड के साथ मिलकर आशा जी ने एक प्रेम गीत रिकॉर्ड किया था अपनी उम्र के 64वें साल में। जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले ने हमेशा संगीत को अहमियत दी। संगीत के क्षेत्र में होने वाले प्रयोग उनके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर संगीतकार नई पीढ़ी के हों, भारत के हों या विदेश के, गीत किसी और भाषा का हो, आशा जी ने हर चुनौती को स्वीकार किया और जब जब जिस गीत को गाया अपने स्वर्णिम सुरों से उस गीत को सुशोभित कर दिया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली आशा जी को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण प्रदान किया जा चुका है। भारतीय सिनेमा को योगदान के लिए आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग अनुराग और वैराग्य का सुखद संयोग जहां है, वो है आशा भोसले का स्व अलंकृत स्वर। हम सब की प्यारी आशा ताई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हीं के गाए इस गीत के द्वारा देते हैं अनंत शुभकामनाएं।

0: आशा भोसले पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आलेख, शोध और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्मी नगमे। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है. एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले.
2: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be a new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities. The four-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from today till 11th September. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a three-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at Bandaranaike International Airport by Sri Lankan Deputy Minister of Defence Aruna Jayasekara and Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha. During his visit, the Defence Minister will hold talks with the Sri Lanka's leadership on various issues to further strengthen bilateral ties in mutually beneficial areas, including a strong maritime and defence partnership. Russia today said that it welcomes any peace efforts by India to end the Ukraine conflict, noting that Moscow's strategy aligns closely with New Delhi's position for a resolution through dialogue and diplomacy. Kremlin spokesman Dmitry Peskov made the remarks while addressing media at a virtual briefing in New Delhi this afternoon ahead of the BRICS summit. Mr. Peskov said they know the position of India on the Ukrainian conflict and to a great extent it corresponds with their own position because they do want the solution to the Ukraine conflict by peaceful means and Russia is open for this process. He said Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin will hold bilateral talks on the sidelines of BRICS summit later this week. The government has approved strategic investment plans with an aggregate project outlay of over 735 crore rupees for ITI clusters in Rajasthan, Uttar Pradesh and Telangana. It includes 241 crore rupees investment plan for Rajasthan, over 240 crore rupees for Uttar Pradesh and 254 crore rupees investment plan for Telangana. It was approved during the 5th National Steering Committee NSC